सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई 2026। श्रोताओं उपस्थित हैं हम अपनी आज की सभा के कार्यक्रमों के साथ।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आइए सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले कर रहे थे अपने दिल्ली केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। विषय है गुरु नानक ने कहा था।
3: गुरु नानक ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेगा समझो उसने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। आपा चिन्ना एक महान गुण है। इस बात का अनुभव महात्मा गांधी को उस समय हुआ जब वे बैरिस्टरी की विद्या प्राप्त कर रहे थे। आपा चिन्ना मनुष्य को अपने अंदर की कमजोरियों से अवगत कराता है तथा जब वह उन्हें देखकर लज्जित होता है और हृदय से उनसे छुटकारा पाने की चाह रखकर प्रयास करता है, तब उसे अपने अंदर विद्यमान प्रभु ज्योति से प्रकाश मिलता है तथा उन पर विजय पाने में सक्षम होता है। धीरे धीरे आगे चलकर स्वयं को पूरी तरह से जानने के कारण उसे प्रभु की असीम शक्ति का वह स्रोत उपलब्ध हो जाता है कि वह आत्मबल द्वारा महामानव बन जाता है। गांधी जी का जीवन इसी का ज्वलंत उदाहरण है। कहते हैं गांधी जी पहले स्वभाव से संकोची थे, 10 आदमियों के सामने बोलने से घबराते थे। दूसरा, असत्य भाषण उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। इन कारणों से उनकी वकालत नहीं चली। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के एक बड़े व्यापारी सेठ अब्दुल्ला ने अपने व्यापार की देखरेख की सहायता के लिए गांधी जी को वहां बुलाया। इस प्रकार गांधी जी डरबन शहर पहुंचे। पर जब उन्होंने भारतीयों के प्रति गोरों के अत्याचार को देखा तो वे सिहर उठे। उनकी आत्मा ने उन्हें ललकारा, उठो जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, शोषण के विरुद्ध आवाज लगाओ, पीड़ितों के मुक्तिदाता बनो। क्योंकि गांधी जी आपा चिन्हने का सबक सीख चुके थे, उन्हें आत्मा की आवाज सुनने में देर नहीं लगी। अपने अंदर की प्रभु की शक्ति के भंडार को पहचान कर उनमें अंग्रेजी साम्राज्य से टकराने का अदम्य साहस पैदा हो गया। झेपू और संकोची गांधी अब शक्तिवान बन चुके थे। गांधी जी पगड़ी उतारे बिना ही बाहर चले गए, पर यह अपमान उनके हृदय को बेध गया तथा उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की ठानी। दक्षिण अफ्रीका में दूसरी हृदय विदारक घटना तब घटी जब गांधी जी वहां रेल यात्रा कर रहे थे। रात के 9 बजे एक अंग्रेज उनके डिब्बे में आया तथा एक हिंदुस्तानी को वहां देख बहुत क्रोधित हुआ। उसने रेल कर्मचारियों को बुलाकर गांधी जी को उस डिब्बे से उतारने को कहा, जबकि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था तथा उनके द्वारा इनकार किए जाने पर उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। साथ ही उनका सामान भी नीचे फेंक दिया गया। गाड़ी चली गई और गांधी जी रात भर शीत में ठिठुरते रहे। पर उनके आत्मबल ने, जो आपा चिन्हने द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ था, उन्हें गर्मी प्रदान की। उन्होंने इस अत्याचार के विरुद्ध अपने मन में योजना बनाई। नेटाल सरकार एक ऐसा बिल पास करना चाहती थी जिससे भारतीयों के अधिकार छीनते थे। गांधी जी ने इस बिल के विरुद्ध जनमत तैयार किया, पर फिर भी वह बिल पास हो गया। फिर भी वे हतोत्साहित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें आत्मबल पर भरोसा था। उन्होंने आंदोलन कायम रखा। अंततः उनकी जीत हुई जब ब्रिटिश सरकार द्वारा वह बिल स्वीकृत न हो सका। फिर दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को नागरिक अधिकार दिलाने हेतु उन्होंने वहां सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिससे उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ। इस प्रकार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे एक व्यापारी की सहायता के लिए, पर शोषण अत्याचार व दमन के विरुद्ध निहत्थे अपने आत्मबल से संघर्ष करते हुए वे पीड़ितों के नेता बन गए। इसका कारण ये था कि उन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली थी। शोषकों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने से पहले उन्होंने स्वयं से अपनी कमजोरियों से संघर्ष किया था। अपने भीतर के असत्य से जूझे थे।

0: अपने भीतर के दबूपन व कायरता पर विजय पाई थी। इस प्रकार स्वयं पर विजय पाकर वे एक महामानव बन गए थे तथा उनमें जादुई शक्ति आ गई थी।
1: ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में कुछ भक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी,
1: एपिसोड नंबर 394। 394।

शिव मंदिर में गुरु की अनदेखी करके अपमान करने के कारण उस जन्म में शूद्र शरीरधारी काकभुशुंडी को भगवान ने सर्प हो जाने का श्राप दिया तो कृपालु गुरु हाहाकार कर उठे। स्तुति करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। विप्र ने दो वर मांगे, एक अपने लिए शिव चरणों में भक्ति और दूसरा शिष्य की शाप मुक्ति।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान की आज की कड़ी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। 7:20 पर होगा परिवार कल्याण का कार्यक्रम घर संसार। 7:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी एल्बम के गीत, कार्यक्रम होगा गीत संगीत। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने राज्य केंद्र से। 8:45 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे होगा कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 10:55 से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र की जनता के साथ मन की बात। तत्पश्चात आप सुनेंगे मन की बात के संस्कृत में अनुवाद का प्रसारण। एक बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने राज्य केंद्र से। 3 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 5:02 पर होगा कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग। 6:02 पर होगा कार्यक्रम मेहनत कश। 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 7 बजे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम छनकार। 7:30 पर होगा सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज एट 9, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर स्पॉटलाइट होगा। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। 10:30 पर कार्यक्रम शामी गजल। 11 बजे हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। और 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। ये थी आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। संस्कृत में समाचार के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। शिवनंदन पांडे गरीब और साथियों के सर में सुनते हैं ये लोकगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं शिवनंदन पांडे गरीब और साथियों के स्वर में कुछ लोक गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है परिवार कल्याण का कार्यक्रम घर संसार। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे अजय कुमार यादव से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी देंगे रेबीज बीमारी से बचाव के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे हैं अशोक कुमार।

0: मित्रों, कुत्ते पालना आमतौर पर शौक माना जाता है लोगों का, और काफी लोग जो हैं इस शौक के कारण कुत्ते को पालते हैं, और यह शौक ही नहीं, कुत्ते को बेहतर प्रहरी के रूप में जाना जाता है, और स्वामी भक्त की जब बात आती है तो उससे भी बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आमतौर पर कुत्ते को जब लोग पालते हैं तो उसके कई नस्ल होते हैं, तो कौन सी नस्ल के कुत्ते हम पालें और उनका रख रखाव कैसे हो, और जब कुत्ता पालते हैं तो एक आम बीमारी रेबीज की बात आती है, तो वो कैसे होता है, सिर्फ काटने से ही होता है या उनके संपर्क में जाने से भी होता है, इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए हम आज उपस्थित हैं घोड़ा अस्पताल के पशु चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार जी के पास। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कुत्ता का जो नस्ल होता है, तो कौन से नस्ल को व्यक्ति अपने पास रखे जो कि उसके लिए मतलब कि उसके संपर्क में आने से बीमारी भी हो जाए तो उसे मतलब बचाव हो सके।
1: नस्ल से बीमारी का उस तरह से संबंध नहीं है
0: जी।
1: नस्ल का चुनाव चूंकि व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत पसंद पर है, तो कुछ चूंकि ये प्रहरी के रूप में है
0: जी,
1: और कंपेनियन डॉग माने कंपेनियन के रूप में, साथी के रूप में भी है
0: जी।
1: कुछ ऐसा है कि छोटे नस्ल के जैसे कुत्ते हैं तो साथी के रूप में बेहतर है, जैसे पग वगैरह नस्ल का, लेकिन वो प्रहरी के रूप में उतना कार्य नहीं कर पाते हैं, या कुछ जैसे इंटेलिजेंट कुत्ते मतलब हैं जैसे डोबरमैन वगैरह है, तो वो सब पुलिस या प्रशासनिक विभाग में उसकी सेवा ले जाती है, खास करके इन्वेस्टिगेशन वगैरह के मामले में, तो वो अपना व्यक्तिगत पसंद और किस तरह की जरूरत है उसके हिसाब से, तो कुछ अलग अलग जैसे कि अगर जर्मन शेफर्ड है, डालमेशियन है
0: जी,
1: चाहे फॉक्स टेरियर है, पग है, पोमेरियन है, तो कुछ छोटे नस्ल के हैं, कुछ बड़े नस्ल के हैं। पग वगैरह जैसे है छोटे नस्ल का है और देखने में प्यारा है, एक साथी के रूप में है
0: जी जी,
1: और जर्मन शेफर्ड है या इस तरह का भी जो भी है अल्सेशियन में, तो
0: ये सारे नस्ल के
1: नस्ल मतलब बहुत ज्यादा नस्ल है कुत्ते का, और सबका चूंकि अपना व्यक्तिगत पसंद, कुछ बड़े जिसका बॉडी वेट काफी ज्यादा है, कुछ का बॉडी वेट काफी कम है, तो जिस तरह का अगर साथी के रूप में रखते हैं तो आप पसंद से वो ले सकते हैं कि किस तरह का लेना है, लेकिन बीमारियों तक जहां तक संबंध है, वो जैसे रेबीज है, चाहे केनाइन डिस्टेम्पर है, हिपेटाइटिस है, या जो भी बीमारियां हैं, तो सब नस्ल के कुत्ते को होगा, वैसा नस्ल पर बीमारी का कोई विशेष रूप से नहीं है।
0: मतलब किसी भी नस्ल के हैं वो बीमारी होनी ही, अगर वो काट लिया है या कुत्ते को होना तो वो होगी ही होगी।
1: मुख्य जो बीमारी सब है तो उसमें वो किसी भी नस्ल के कुत्ते को हो सकती है, तो उसमें एक मुख्य बीमारी रेबीज है
0: जी,
1: क्योंकि रेबीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और उसका है कि बहुत से तरह के जानवरों में, आदमी से लेकर के पालतू पशुओं में, कुत्तों में, बहुत ज्यादा जाति के पशुओं को ये आक्रांत कर लेता है, और ये बहुत ही भयानक और घातक इस मामले में है कि टीकाकरण ही इसका उपाय है, और बीमारी के लक्षण प्रकट हो जाने पर इसका कोई उपाय, कोई दवा नहीं है, तो इसका बेहतर है कि पहले से वैक्सीनेशन कराया जाए, टीकाकरण, और उसके साथ कैसे ये फैलता है
0: जी।
1: तो फैलने का मुख्य रूप से इसका काटने से होता है
0: जी, मुख्य रूप से इसके काटने से ही ये बीमारी होती है।
1: काटने में जो है, जैसे अगर स्किन में, चमड़े में अगर वो पकड़ लेता है, चाटने से उसका नहीं है, लेकिन चाटने से चूंकि वायरस इसका लार में रहता है
0: जी जी, जी।
1: हालांकि ऐसा नहीं है कि हर समय रहता है, लेकिन अगर किस समय है, किस समय नहीं है, लेकिन खास करके अगर पागल कुत्ता है तो वो तो निश्चित रूप से
0: बीमारी होगी उसमें,
1: उसमें बीमारी, उसमें वायरस है, लेकिन कभी कभी जैसे रोड पर जो कुत्ते चलते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि उसमें बीमारी नहीं है लेकिन वायरस उसमें है।
0: अच्छा,
1: उसको कतई मतलब निरापद नहीं समझा जा सकता है, तो वैसा कुत्ता भी अगर काट लेता है तो उससे रेबीज बीमारी की आशंका पूरा है,
2: तो उसका टीकाकरण करवाना होगा, टीका लेना होगा,
1: टीका उसका लेना होगा,
2: इंजेक्शन उसका लेना होगा जी। जी अच्छा, ये इस बीमारी से बचाव के लिए जो आपने कुत्ते का जो आपने बताया, तो कितने अंतराल में, कितने समय अंतराल में, कितने वर्षों के लिए के दरमियान कुत्ते को लगानी चाहिए
1: वैक्सीनेशन? पहले तो हम काटने के बारे में, अच्छा इसके बारे में हम बता देते हैं। इसमें आपको जो है कुत्ता को 2 से 2.5 महीने पर या 3 महीने के अंदर में एक बार, 2-3 महीने से पहले एक बार ले सकते हैं जहाँ तक ज्यादा आशंका है तो, लेकिन उसके बाद फिर 1 महीने के बाद फिर एक बार रेबीज का टीका लेना है, और उसके बाद वो हर साल पर, हर साल उसका 1 वर्ष के अंतराल पर उसका रेबीज का टीका दिलाते जाना है।
2: और वैक्सीनेशन वाले कुत्ते अगर काट ले किसी को तो उसे फिर बीमारी का खतरा नहीं रहता?
1: वैक्सीनेशन का कुत्ता मतलब जो जिसको वैक्सीन पड़ा हुआ है वो तो निरापद हो गया, और प्लस उसकी भी सुरक्षा होती है, क्योंकि उसको भी कोई अगर कुत्ता काट लेता है तो ज्यादातर जैसे कुत्ता के काटने से होता है, या पागल अगर जैसे रेबीज हो गया, जो जिसके रेबीज की बीमारी आ गई, अगर वैसे कुत्ता है या बकरी, अरे गाय है, बकरी है या और कोई भैंस है, पालतू पशु भी है, उसको अगर रेबीज की बीमारी पूर्ण रूप से प्रकट हो गई है, उसका लक्षण आ रहा है, तो उसके मुंह में हाथ डालने से या कोई दवा अगर पिलाते समय हाथ में काट लिया या इस तरह का है तो उसके काटने से भी हो सकता है। इसके अलावा जो है देहातों में जैसे सियार हो गया ना, और इसी नस्ल के जो भी प्राणी जो इससे मिलते जुलते हैं, चमगादड़ हुआ, उस सब के काटने से भी फैलता है,
2: इन सबों मतलब बीमारी की खतरा रहता है।
1: एक और चीज इसको बताना चाहेंगे कि अगर रेबीज से वैसा आशंका वाला कोई भी कुत्ता या दूसरा पशु काट लिया है तो सबसे पहले साबुन से उसको धोना चाहिए
2: जी,
1: वो साबुन उसको बहुत वायरस को नष्ट करने में वो सहायक है, तो साबुन लगा करके उसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। उसके बाद चूंकि घाव हो गया है तो उसे बाद में एंटीसेप्टिक कोई मलहम या क्रीम उसमें लगा सकते हैं,
2: डिटॉल वगैरह सभी धोने से फायदा
1: धो सकते हैं, लेकिन पहले उसको साबुन से धोया जाए जितना जल्दी हो सके।
2: अच्छा, कभी कभी ऐसे देखने में आता है कि उपलब्ध इसकी दवाइयाँ नहीं होती है हॉस्पिटल में, तो ऐसे में टेटनस से क्या लगा देना चाहिए रोगी को?
1: टेटनस तो चूंकि टेटनस से बचाव करता है, और रेबीज बीमारी का वैक्सीन अलग है
2: जी,
1: और टेटनस तो टेटनस
2: नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आरंभिक शुरुआती के लिए
1: है, तो उसको अगर काट लिया है कुत्ता उस तरह का या कोई भी पशु जो रेबीज से आक्रांत है, तो उसको अगर मिट्टी जैसे उसमें लग गया है वो टेटनस का बैक्टीरिया जाने का खतरा है, तो उसको टेटनस का तो टीका ले लेंगे, लेकिन टेटनस से वो रेबीज का कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग बीमारी है
2: जी, जी, जी।
1: और रेबीज के लिए उसका टीका है कि उसी दिन से, अगर इसका रिकमेंडेशन है कि उसी दिन से रेबीज
2: का, 0 दिन से पड़ता है,
1: हाँ 0 दिन से पड़ा, अगर लेट हो जाता है,
2: लेकिन किसी का 2-4 दिन
1: अगर लेट हो गया 2 दिन तो भी उसको छोड़ना नहीं है, चूंकि करा लेना है, लेकिन ध्यान देना है कि अगर काट लिया तो उसी दिन से जहां तक संभव है जितना जल्दी करें, और उसका कोर्स है पूरा कोर्स का मतलब ले लेना चाहिए।
2: अभी कितना इंजेक्शन का डोज है डॉक्टर साहब?
1: अभी तो पालतू पशुओं में है वही
2: 5
1: है, लेकिन 1 महीना के अंदर 5 डोज पड़ जाता है, और उसका एक शेड्यूल बना हुआ है, और 3 महीना 90 दिन पर 6वां डोज है जो कि ऑप्शनल है, तो उसको नहीं लेने ज्यादा डर है तो उसको भी ले सकते हैं।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल, बहुत कोई को कुत्ते के संपर्क में रहने, जैसे साथ में लेकर के सोना और मतलब बिल्कुल साथ साथ रहना, तो ये घातक है या फिर चल सकता है?
1: कुछ ऐसे स्किन वाले जो बीमारियां हैं और दूसरी बीमारियां हो सकती है, लेकिन साथ रहने से रेबीज बीमारी नहीं होगी
2: जी।
1: अगर कुत्ता काट लेता है या पकड़ लिया, लेकिन स्किन में पेनेट्रेशन होना चाहिए, स्किन में छेद होना
2: जी जी,
1: और स्किन में अगर नहीं है, लेकिन अगर स्किन कहीं घाव है या कहीं छिल गया है, तब उससे भी उसका जो बैरियर है वो खत्म हो जाता है, तो उसका लार से जा सकता है, अगर लार के संपर्क में आया है तो वायरस जा सकता है, इसलिए उसको मतलब उसको ध्यान में रखना होगा। और अगर जैसे गाय को अगर काट लिया है, उसका टीकाकरण चल रहा है, तो ऐसा गाय का दूध बिना आधा घंटा बॉयल किए हुए, खौलाए हुए, खौला करने के बाद ठंडा करके तब उसको सेवन कर सकते हैं।
2: नहीं तो अगर किसी गाय को कुत्ते ने काटा हो, काट खाया हो, और उसमें भी रेबीज का असर हो गया, उसका दूध पी रहे हैं तो फिर उसे भी रेबीज होने का खतरा रहता है।
1: क्योंकि ओरल रूट से खाने वाले रूट से थोड़ा संभावना कम है, लेकिन उसको निरापद नहीं है, तो उसको दूध को आधा घंटा अगर हम खुला करके फिर उसको ठंडा करके सेवन करते हैं तब उसमें खतरा खत्म हो जाता है।
2: तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना डॉक्टर अजय कुमार यादव जी से कि रेबीज बीमारी कुत्ते के माध्यम से किस प्रकार से फैलती है और ये कितना घातक है हमारे लिए और क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने एक अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अजय कुमार यादव से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी दे रहे थे रेबीज बीमारी से बचाव के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे थे अशोक कुमार। इसी के साथ परिवार कल्याण का कार्यक्रम घर संसार यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम है गीत संगीत। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत सोनू निगम की आवाज में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनते हैं अभिजीत के स्वर में ये गीत।

0: अभिजीत के गाए से गीत के साथ कार्यक्रम गीत संगीत यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के

0: अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार

0: बढ़ोतरी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अंबिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अंबिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। आईपीएल के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिनाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New

0: उम्मीदवार पर चर्चा। हेमंत सोरेन से फिर मिले तेलंगाना के डिप्टी सीएम। आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, साहिबगंज के युवक समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार। और आरडीसीए महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज, रातू रोड 11 और रॉक मिल्स क्रिकेट एकेडमी के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। हजारीबाग समाहरणालय सभागार में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जिले में प्रशासनिक स्तर पर नई टीम का गठन किया गया है और उप विकास आयुक्त को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
1: तो दिशा कमेटी के माध्यम से ये तय किया है कि मेडिकल कॉलेज में डीडीसी को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनको दिया जाए ताकि उनके देखरेख में जो भी अव्यवस्था है उसको ठीक किया जाए। सभी माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बताया है कि हर छोटी छोटी चीज की ओर उन्होंने ध्यान दिया है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद बेहतर करेंगे। ऐसे जो एक्सपीरियंस रहा है हजारीबाग का बहुत अच्छा तो नहीं रहा है।
0: बैठक में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना प्राथमिकता होनी चाहिए और इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

0: स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अपने पूरी तरह से बीमार है, एक भी पैरामीटर पे वो खरा नहीं उतरा। पीएचडी का वही हालत है, बिजली विभाग का वही हालत है। कमी बेसी देखिएगा तो राज्य सरकार जो है ये बैसाखी पर है, मोटा मोटी यही हम लोग कह सकते हैं।
1: झारखंड में 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम दलों के बीच उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। इसी सिलसिले में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि गठबंधन के सभी दलों से बातचीत की जाएगी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता मैपिंग की प्रगति और उससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलए 2 के साथ समन्वय स्थापित कर मतदाता मैपिंग कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़े बहुराज्य अभियान के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में झारखंड के साहिबगंज निवासी नीतीश पासवान समेत कुल 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में आयोजित प्रेसवार्ता में विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित 29 और 30 मई की रात कई राज्यों के सुरक्षा कार्यालयों और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एटीआईआर न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन दिवस के अवसर पर रांची में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ

0: रहो थीम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने की। इस अवसर पर पहली बार मासिक धर्म में प्रवेश करने वाली किशोरियों को हाइजीन और पोषण किट प्रदान किया गया।
1: महामारी किसी तरह का कोई उसको सामाजिक गलत सोचना नहीं है, वो एक नेचुरल फेनोमेना है। सभी कस्तूरबा बालिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत एक एक वो इंसिनरेटर भी दिए हैं ताकि नैपकिन डिस्पोजल के लिए वो उपयोगी रहे, और जो सभी यहाँ बालिकाओं के लिए ट्रेनिंग भी दिए है।
0: रांची और गुमला पुलिस की संयुक्त टीम के समक्ष झांगुर ग्रुप के प्रमुख और 5 लाख रुपए के इनामी अपराधी रामदेव उरांव ने अपने दो सहयोगियों प्रसाद उरांव और सुभाष उरांव के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के अनुसार रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने रांची गुमला सीमा क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान तीनों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया गया। बताया गया है कि वे झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटना चाहते थे। गिरिडीह जिले के नवडीहा पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से लाखों रुपए मूल्य की नकली शराब जब्त की है। खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान 61 पेटी तैयार नकली विदेशी शराब, 15 लीटर स्प्रिट, बड़ी संख्या में खाली बोतलें बरामद की गयी। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में आज वज्रपात के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी और सिमडेगा जिलों में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है।
2: जो लगातार थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है उसके असर अधिकतम तापमान में गिरावट जो है वो देखी जा रही है, तो हमारा अनुमान ये है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, जिसको देखते हुए कई मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन के लिए जो है अलर्ट भी जारी किए गए हैं। हवा की गति जो है वो भी काफी तेज रह सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है, चेतावनी भी जारी की गई है।
0: रांची जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित RDCA महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज रातू रोड 11 और रॉक मिल्स क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला जाएगा। यह मैच रांची के शाखा मैदान सेक्टर 2 में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण समारोह दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। रांची जिला क्रिकेट संघ ने खेल प्रेमियों को फाइनल मुकाबला देखने के लिए आमंत्रित किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार 9 ISI के संदिग्धों की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा, देश में धमाकों की आतंकी साजिश नाकाम, साहिबगंज के युवक समेत 8 गिरफ्तार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पहली झारखंड T20 की नीलामी पूरी, ईशान से महंगे बिके रॉबिन मंच। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव के लिए मंथन तेज। दैनिक जागरण और रांची एक्सप्रेस की लीड है, वैभव सूर्यवंशी को झारखंड सरकार बनाएगी स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी पर देशवासियों से करेंगे संवाद। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की हजारीबाग में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में मंथन तेज, झामुमो कांग्रेस के बीच राज्यसभा उम्मीदवार पर चर्चा, हेमंत सोरेन से फिर मिले तेलंगाना के डिप्टी सीएम। ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, साहिबगंज के युवक समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार। और RDCA महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज रातू रोड 11 और रॉकमिल्स क्रिकेट एकेडमी के बीच होगी, खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
2: अभी आप सुन रहे थे हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। आइए सुनते हैं वारंट फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: है तार टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप आए बहार आई, सुनते हैं इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बचना ए हसीनों इस फिल्म का गाना के और शिल्पा राव की आवाजों में अन्विता दत्त गुप्तन का लिखा हुआ गाना, विशाल शेखर का संगीत।

जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें सबसे पहले कुछ अल्पकालिक प्रभाव दिखने लगते हैं, जैसे कि हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है और इन तात्कालिक प्रभावों से हृदय प्रणाली पर दबाव पड़ता है और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। कई धूम्रपान करने वाले लोगों में सहन शक्ति में कमी हो जाती है, लगातार खांसी और स्वाद और गंदगी अनुभूति में भी कमी होने लगती है। ये बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। आई एम कलाम फिल्म का गाना, के की आवाज में मानवेंद्र का लिखा हुआ गाना, अभिषेक राय का संगीत।

अब हम बात करते हैं तंबाकू सेवन के जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं उसके बारे में। फेफड़ों का कैंसर जो है वो तंबाकू से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये भी जो बीमारियां हैं फेफड़ों की कार्यक्षमता को धीरे धीरे कम करती चली जाती है और उसके बाद नष्ट कर देती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और तंबाकू जो लोग उपयोग करते हैं उनमें मुंह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की जो बीमारी है वो बहुत देखी जाती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर प्रतिवर्ष 31 मई को ये दिन मनाया जाता है। और अगर हम चाहें तो ये जो तंबाकू है इसके सेवन से बच सकते हैं और लाखों लोगों की जो जान इस के सेवन से चली जाती है उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए आज नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम तंबाकू को यानी कि टोबैको को कहें नो और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना केके की आवाज में कौसर मुनीर के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना इकबाल फिल्म से के सलीम मर्चेंट, डोमिनिक क्लिंटन और साथियों की आवाजें, इरफान सिद्दीकी के बोल, संगीत है सलीम सुलेमान का।

इकबाल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: मौसम ऐसा है कि आंगन आंगन में बरस रहा है रिमझिम पानी।
1: रिमझिम बरसे पानी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहां वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता,

वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल विश्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल बिस्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल बिस्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: अब सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

आदिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य

उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल विश्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल विश्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल विश्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल विश्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल बिस्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

0: वैसे इसके अलावा अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिपकर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल बिस्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनकी करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल बिस्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहां उन्होंने कई समूह

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

सभी सुनने वालों को माधवी का नमस्कार। हेलो हजारीबाग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, जो हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साथियों, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि शरीर स्वस्थ है तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, परिवार का ध्यान रख सकते हैं और समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। लेकिन तंबाकू एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है और कई तरह की गंभीर

बीमारियों का कारण बनती है। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बारे में जागरूक करना है। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। हमारे देश में भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, जर्दा, पान मसाला और अन्य धूम्र रहित तंबाकू उत्पादों का उपयोग बड़ी संख्या में किया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत तंबाकू नुकसान नहीं करता, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि तंबाकू का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, तंबाकू एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में निकोटीन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है, जिसकी लत व्यक्ति को लग जाती है। तंबाकू का सेवन दो रूपों में किया जाता है, धूम्रपान के रूप में, चबाने या मुंह में रखने के रूप में। दोस्तों, बातें हमारी जारी रहेंगी इस गीत के बाद।

दोस्तों, इस गाने से पहले हमने बातें की कि तंबाकू एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में निकोटिन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है, जिसकी लत व्यक्ति को लग जाती है। तो निकोटिन के कारण व्यक्ति बार बार तंबाकू का सेवन करना चाहता है और धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाती है। दोस्तों, तंबाकू का सेवन शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है। तंबाकू के सेवन से मुंह, गले, जीभ, फेफड़े और भोजन नली के कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि लंबे समय तक गुटखा या खैनी खाने वाले लोगों के मुंह का खुलना कम हो जाता है, मसूड़ों में समस्या होती है और बाद में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। तंबाकू रक्तचाप बढ़ाता है और हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है, इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट और बीड़ी का धुआं फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, इससे सांस फूलना, लगातार खांसी और गंभीर श्वसन रोग हो सकते हैं। तंबाकू पर खर्च किया गया पैसा परिवार की शिक्षा, पोषण और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च हो सकता है। इसलिए तंबाकू केवल स्वास्थ्य ही नहीं आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति स्वयं धूम्रपान नहीं करता लेकिन अगर वो ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा है जो सिगरेट पीता हो या बीड़ी पीता हो, तो उसका धुआं उसे नुकसान पहुंचाता है। यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसका प्रभाव केवल उसी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। दोस्तों, कई बार दोस्ती, दिखावे या उत्सुकता में युवा तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं। यह शुरुआत मजाक या शौक के तौर पर शुरू होती है लेकिन धीरे धीरे लत बन जाती है। दोस्तों, ना कहना भी एक ताकत है। यदि कोई मित्र तंबाकू या धूम्रपान करने के लिए दबाव डालता है तो आत्मविश्वास के साथ मना करें। सच्चा मित्र वही है जो आपको अच्छी आदतों की ओर ले जाए, बुरी आदतों की ओर नहीं। दोस्तों, तंबाकू छोड़ने का लाभ किसी भी उम्र में मिल सकता है। तंबाकू छोड़ने के बाद शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, सांस लेना आसान हो जाता है, हृदय रोग का खतरा कम होने लगता है, परिवार का आर्थिक बोझ घटता है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने परिवार और बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनते हैं। दोस्तों, यदि कोई तंबाकू छोड़ना चाहता है तो उसे तंबाकू छोड़ने की एक निश्चित तारीख तय कर लेनी चाहिए। परिवार और मित्रों का सहयोग लेना चाहिए। तंबाकू सेवन की इच्छा होने पर पानी पीना चाहिए, फल, सलाद या स्वास्थ्य नाश्ता का सेवन करना चाहिए, नियमित व्यायाम और योग करना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक से अवश्य परामर्श लेना चाहिए। याद रखिए, शुरुआत कठिन लग सकती है लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ तंबाकू की लत से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, तंबाकू मुक्त समाज बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार या स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम किया जाए, युवाओं को सही जानकारी दी जाए, सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान का विरोध करना चाहिए, परिवार के सदस्यों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब समाज जागरूक होगा तभी स्वस्थ भारत का सपना साकार होगा। दोस्तों, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए, बातें अभी बहुत है। फिलहाल आइए सुनते हैं एक गाना।

दोस्तों आज 31 मई है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है और ये दिवस हमें यह संदेश देता है कि जीवन अमूल्य है और हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। आइए आज इस अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करेंगे एवं अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावे हम अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में अपना योगदान देंगे। दोस्तों, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए हेलो हजारीबाग।

आप सुन रहे हैं हेलो हजारीबाग और मैं हूं आपकी दोस्त माधवी। दोस्तों, आज लगभग हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है तनाव यानी स्ट्रेस। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहती हैं, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में काम का दबाव, पढ़ाई की चिंता, पारिवारिक जिम्मेदारियां और भविष्य की अनिश्चितताएं कई बार हमारे मन को बोझिल बना देती है। धीरे धीरे यही तनाव हमारे स्वास्थ्य, व्यवहार और रिश्तों को प्रभावित करने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तनाव को समझकर और कुछ छोटे छोटे उपाय अपनाकर हम इसे काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तनाव होना कोई असामान्य बात नहीं है, यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। समस्या तब होती है जब हम तनाव को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जब भी तनाव हम पर हावी हो, हमें चाहिए कि हम एक लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस को अंदर भरें और फिर आराम से बाहर छोड़ें। यह सरल अभ्यास है, मन को शांत करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, कई बार हम अपनी समस्याओं को मन के भीतर ही दबा कर रखते हैं, ऐसा करने से तनाव और बढ़ जाता है। इसलिए अपने किसी प्रिय मित्र, परिवार के सदस्य या शुभचिंतक से अपनी बात साझा करें। याद रखिए, बात करने से मन हल्का होता है और समाधान के रास्ते भी दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, करेंगे हम और भी बात। फिलहाल सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि तनाव को कैसे कम किया जाए। तनाव कम करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है अपने शरीर को सक्रिय रखना, रोजाना कुछ समय टहलना, योग करना या हल्का व्यायाम करना। न केवल

शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। यदि आप छात्र हैं और पढ़ाई का दबाव महसूस करते हैं तो अपने समय का सही प्रबंधन करें। बड़े बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। एक समय में एक कार्य पर ध्यान दें। इससे काम आसान लगेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। दोस्तों, आज के समय में मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन लगातार स्क्रीन पर बने रहना भी तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए दिन के कुछ समय मोबाइल और इंटरनेट से दूरी बनाकर अपने परिवार और दोस्तों या पसंदीदा गतिविधियों के साथ अपना समय बिताएं। दोस्तों, कभी कभी प्रकृति भी तनाव दूर करने की सबसे अच्छी दवा साबित होती है। सुबह की ताजी हवा, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और खुला आसमान मन को नई ऊर्जा देते हैं। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के बीच अवश्य बिताएं। एक और महत्वपूर्ण बात, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, क्षमताएं और जीवन यात्रा अलग होती है। अपनी प्रगति पर ध्यान दें और अपनी छोटी छोटी सफलताओं का सम्मान करें। याद रखिए, पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण निरंतर प्रयास है। यदि आज का दिन कठिन रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि आने वाला कल भी वैसा ही होगा। और तनाव कम करने का सबसे अच्छा जरिया संगीत है, तो चलिए सुनते हैं एक गाना।

दोस्तों, तनाव यदि लंबे समय तक बना रहे, नींद प्रभावित होने लगे, मन उदास रहने लगे, दैनिक कार्य में कठिनाई महसूस हो, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या परामर्शदाता से सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। जैसे हम शारीरिक बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, सकारात्मक सोच विकसित करेंगे, अपनी बातों को अपने अपनों के साथ साझा करेंगे और जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। दोस्तों, जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारी उम्मीद, हमारा साहस और हमारा आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। मुस्कुराइए, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए और हर दिन को एक नए अवसर की तरह स्वीकार कीजिए। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में। सुनते हैं एक गाना।

दोस्तों, हर दिन अगर एक जैसा लगने लगे तब जीवन में निरस्ता बढ़ने लगती है, बोरियत और फंसे हुए होने का एहसास सताता रहता है। अच्छी बात यह है कि जीवन में आई इस एक रस्ता को दूर करना मुश्किल नहीं है। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम जीवन को उत्साह से भर सकते हैं। दिन में केवल 10 से 15 मिनट किसी ऐसी चीज के बारे में जानने में बिताएं जिसे आप सामान्य मान चुके हैं। अपने मोहल्ले की किसी नई गली में घूमें, ऐसे सहकर्मी से बात करें जिससे कम बात होती है, या घर के पास लगे पेड़ों के नाम जानें। यह आपके मस्तिष्क को खोज मोड में लाता है और दुनिया नई लगने लगती है। थोड़े रचनात्मक बने, अपनी पसंद का कोई हुनर सीखें, गिटार बजाना, पेंटिंग, कुकिंग या फिर किसी नई भाषा सीखने में समय दें। हफ्ते में कम से कम 2 सेशन इसके लिए रखें। रचनात्मकता जीवन में कुछ नया रचने की खुशी देती है। आप स्वयं पर भरोसा बढ़ा सकते हैं। रोमांच को गले लगाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, किसी अनजान सामाजिक कार्यक्रम का न्योता स्वीकार करें, किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बने या किसी नई जगह घूमने जाएं। रोमांच वहां होता है जहां हम कठिन लगने वाले काम करते हैं।

बड़े लक्ष्यों के बजाय बहुत छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और धीरे धीरे प्रगति करते हुए आगे बढ़ें। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो पूरी किताब एक साथ पढ़ने की बजाय रोज 10 से 15 पेज पढ़ें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। छोटे छोटे लक्ष्यों की जीत खुशी का हार्मोन रिलीज करती है जो आपको सक्रिय रखती है। और हाँ दोस्तों, एक बात, हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटे मोबाइल से पूरी तरह दूर रहें। इस समय को आप अपने अपनों के साथ बिताएं, कहीं घूमने जाएं, किसी की मदद करें। देखिए आपके जीवन से कैसे निरस्ता दूर हो जाती है। और आइए अब सुनते हैं एक गाना।

दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एपीजे अब्दुल कलाम के अनमोल विचार। इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चलो। सपने वो नहीं

जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र की जनता के साथ मन की बात।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बुलबुल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
13: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
14: नमस्कार सर। नमस्कार।
15: नमस्कार सर।
13: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी,

0: लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को

0: सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनुमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: तो हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना,

कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान

इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को, एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना
और लगातार कुछ नया सीख

करते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया।
बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण

0: भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राँची नगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रिय मानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देव मीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वान् अपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति 100 मीटर मित धावनस्पर्धा इत्येषा, अर्थात् 100 मीटर मितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये 100 मीटर मिते धावनक्रमे राष्ट्रिय मानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतद् भद्र प्रदर्शनं कृतं तौ स्तः गुरिन्दर वीर सिंहः, अनिमेष कुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री, अनिमेषवर्य नमस्कारः। गुरिन्दर वीरः भवतेऽपि नमस्कारः। सत्श्री अकाल च। अनिमेष गुरिन्दर वीरौ नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री, साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति। भवद्युगलमपि विशेष प्रदर्शनमकरोत्। वयं सङ्गीते तु युगल प्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेऽपि अधुना युगल प्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमम् एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत् समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति। अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतोः। अहमिच्छामि मन की बात इत्यस्य श्रोतारः अपि एतस्मिन् विषये भवतोश्च विषये जानीयुः। भवद्भ्यां यः पराक्रमः कृतः तं विषयमभिजानीयुः। अनिमेषः, नमस्ते महोदय। मम नाम अनिमेष कुजूरः। अहं 200 मीटर 400 मीटर इत्यनयोः राष्ट्रिय कीर्तिमानाङ्कन धर्ता अस्मि। अथ च महोदय, अहं मूलतः छत्तीसगढ़तः अस्मि। अधुना च अहं ओडिशा पक्षतः क्रीडामि। विगत वर्षे अहं एशियन अथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येताभ्यां पदकानि समर्जितवान्। अथ अहं एथलेटिक्स इत्येतां क्रीडाम् 21st-20th वर्षे समारब्धवान्, यदा अहं विद्यालयीयम् अध्ययनं पूर्णं कृतवान्। अहम् अम्बिकापुरस्थितात् सैनिक विद्यालयात् उत्तीर्णः अभवम्। अथ पूर्वमहं पदकन्दुकं क्रीडामि स्म। कोविड संक्रमण काले मम पितरौ क्रीडितुं मह्यमवसरं कल्पितवन्तौ। बहिः गत्वा धाव, क्रीडवा इति तौ वदतः स्म। यदा च कोविड संक्रमण कालः समाप्तिं गतः, तदा मम मित्राणि, यानि मया सह पदकन्दुकं क्रीडन्ति स्म, माम् आहूय विज्ञापितवन्तः यत् राज्यस्तरीयं मेलनं जायमानमस्ति, त्वं गत्वा सहभागितां कुरु। अहं च तत्र सहभागितां कृतवान्। मया एतन्न ज्ञातमासीत् यत् तत्र राष्ट्रस्तरीयं चयनं जायेत। अहं ततः राष्ट्रियदले चितः जातः। अथ अधुना अहं भारतस्य प्रातिनिध्यम् अन्ताराष्ट्रियस्तरे कुर्वन्नस्मि। प्रधानमन्त्री, भवतु, गुरिन्दरवीर किं प्रवर्तते? गुरिन्दरवीरः, नमस्ते श्रीमन्। मम नाम गुरिन्दरवीरः। अहं भारतीय नौसेनायां टटी आफिसर इत्येतस्मिन् पदे कार्यरतः अस्मि। अहं च भारतस्य सर्वतः तीव्रधावकः अस्मि। अनतिचिरमेव अहं 100 मीटर मितं धावनं 10.09 सेकेण्ड मिते काले समाप्य राष्ट्रियं कीर्तिमानाङ्कनं समर्जितवान्। अहं प्रथमः तादृशः भारतीयः अस्मि यः 10.1 सेकेण्ड इत्यवधेः अपि अल्पकाले एव धावनं पूर्णं कृतवान्। मम प्रयासः भवति अहं धावनपथे सैन्यवेशभूषायां चापि स्वस्य देशस्य सेवां कुर्याम्। मम पिता पितामहश्च उभावपि क्रीडकौ आस्ताम्। अस्माकं भारतीय संस्कृतिः एषा, यदा नाम किमपि पर्व भवति, यथा दीपावली, नूतनवर्षः वा, तदा वयं स्वगृहस्य स्वच्छतां कुर्मः। अहमपि तदा पितुः वैजयन्तीनां पदकानां च स्वच्छतां करोमि स्म। तत् कार्यं मह्यं बहु रोचते स्म। अहम् अतिप्रसन्नः भवामि स्म। तस्मिन् काले यदा अहं कामपि वैजयन्तीं स्वच्छां करोमि स्म, तदा अहं पृच्छामि स्म, एषा चल वैजयन्ती कुतः विजिता? एतत् पदकं कुत्र जितम्? एतत् चित्रं कदा आकृतम्?

0: की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई, आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे दहला इस फिल्म का गाना। गीतकार हैं पंची जालुनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनीति चौहान, फिल्म का नाम हमराज।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं केके और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज केके की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम का अगला गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन उरेकवार का लिखा हुआ, इसे आवाजें दी हैं केके और सुनीति चौहान ने। फिल्म का नाम है रूड।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: ये आवाजें के अलीशा चिन्नॉय और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज केके की और ये फिल्म है मेट्रो।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वेषा सरकार की, फिल्म का नाम है लव यू सोनियो।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने मशहूर पार्श्व गायक केके को याद किया।

आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूट कर न जाने कहां चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहां छोड़ के रूठ कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी, ये ठीक उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई जिंदगी से जब चला जाता है और जिंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी जिंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफर को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप हैं ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का ये है पहला गीत। राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रांची की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया जिक्र, गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत कर दी बधाई। सीयूईटी यूजी तकनीकी दिक्कत पर एनटीए ने जताया खेद, 3,765 अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा की तैयारी, एनटीए जल्द करेगा नई तारीख की घोषणा। रांची के जलाशयों और नदियों से अतिक्रमण हटाने का दिया गया निर्देश, हरमू नदी, कांके और धुरवा डैम पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कल से महंगी होगी बस यात्रा, रांची हजारीबाग समेत कई रूटों पर 30% तक बढ़ा किराया, यात्रियों के साथ माल ढुलाई पर भी पड़ेगा असर। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम होगा आईपीएल का फाइनल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस में होगी खिताबी जंग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देशभर के करीब 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों गुरविंदर सिंह और विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 100 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत भी की। खिलाड़ियों ने अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए।
2: संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूं। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदरवीर जी का क्या है?
4: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदरवीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मौजूदा गर्मी के मौसम में विशेष सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए और तेज धूप में बाहर निकलते समय सतर्क रहना चाहिए।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से माफी मांगी है। एनटीए के अनुसार 30 मई को आयोजित परीक्षा की पहली पाली में कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी। एजेंसी ने बताया है कि इस समस्या से प्रभावित कुल 3,765 अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। पुनर्परीक्षा की तिथि और प्रभावित उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। रांची जिले में जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में प्रमुख जलाशयों और नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरमू नदी के जलग्रहण क्षेत्र, कांके डैम, थुरवा डैम और अन्य प्रमुख जलाशयों के आसपास से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण की सूची तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया डीएनडी न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा आज राज्य भर के 94 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 45,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। राजधानी रांची में सबसे अधिक 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आयोजित यह परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई और दोपहर 12 बजे तक चली। कोडरमा जिले में 1 जून से बस यात्रा महंगी हो जाएगी। जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन ने डीजल, टायर, मोटर पार्ट्स और टोल टैक्स की बढ़ती लागत को देखते हुए बस किराए में 15 से 30% तक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। झुमरी तलैया में आयोजित एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने बताया कि बढ़ी हुई दरें 1 जून से लागू होंगी। इससे झुमरी तलैया से रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, चतरा, नवादा और रजौली सहित विभिन्न मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक किराया देना होगा। सिमडेगा जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ जलडेगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र के गांगू टोली स्थित शनिमनी ढाबा में छापेमारी कर पुलिस ने विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब बरामद की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मदेव पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
5: जंडेगा थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया था, जिसमें लगभग 8 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और बियर की बरामद की गई, साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो है। बोकारो जिले के बीएसएल की एलएच कॉलोनी में एक घर में भीषण आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मिली जानकारी के अनुसार घर में रखा मिट्टी तेल का एक ड्रम आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद आग तेजी से फैलकर पूरे घर में फैल गई।

7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रांची की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया जिक्र। गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत कर दी बधाई। सीयूईटी यूजी तकनीकी दिक्कत पर एनटीए ने जताया खेद। 3765 अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा की तैयारी। एनटीए जल्द करेगा नई तारीख की घोषणा। रांची के जलाशयों और नदियों से अतिक्रमण हटाने का दिया गया निर्देश। हरमू नदी, कांके और धुरवा डैम पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कल से महंगी होगी बस यात्रा। रांची हजारीबाग समेत कई रूटों पर 30% तक बढ़ा किराया। यात्रियों के साथ माल ढुलाई पर भी पड़ेगा असर। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम होगा आईपीएल का फाइनल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस में होगी खिताबी जंग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं। बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं। बिछड़े से भी बारी बारी सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही हैं, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारे सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है। हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी। हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोचकर लिखने बैठूंगा। नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने, यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है जिसमें प्रेम

विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

जी तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो कभी दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है किसी की।

दाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ, उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारी बहुत सारी श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना?

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहर में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहर में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वही एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है, रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करते ही उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींद छीन लेता है। इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो है हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है, हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात, और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारे रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहां हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है पर उठकर नहीं हम जा रहे, माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं, साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार,

कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से, ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए? लिखिएगा ये बात, हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की जिंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

ग्यावासी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ता उम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर एक श्रोता।

कहते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। लूट कर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो, मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौट कर आएगा अचानक और कहेगा मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूं मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है, ये आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो, तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं, शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दुनिया बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी के बोल और रवि की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां मां लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें जरा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ भी नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है। इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती। ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी

उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी, और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।

साथियों, आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे है। अलग अलग तरह से किया जाने वाला तंबाकू सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। एक शोध के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाले 10 लोगों में से प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की मृत्यु इससे होने वाले कैंसर या अन्य घातक बीमारियों से हो जाती है। इतने खतरनाक परिणामों को जानते हुए भी लोग इसकी लत के गुलाम बने हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

0: हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रूढ़ियां भी तंबाकू सेवन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू युक्त पान और पान मसाले आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान नवाजी और आवभगत के रूप में ऑफर किए जाते हैं। ऐसे शौक और परंपराएं किस काम की जिनसे एक पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाए, जीवन पर घोर संकट आ जाए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के बारे में डेविड बिन का कथन है, तंबाकू का वास्तविक चेहरा बीमारी, मौत और डर है, न कि चमक और कृत्रिमता जो तंबाकू उद्योग के उत्पाद बेचने वाले लोग भ्रमित विज्ञापनों के माध्यम से हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। चिकित्सकों के अनुसार मुंह और गले के कैंसर के 90% मामले केवल कैंसर के कारण होते हैं। अपनी पत्नी के लिए, अपने वृद्ध माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस समाज के लिए और देश के लिए अपने जीवन को तंबाकू सेवन से खतरे में मत डालिए। आज ही और अभी दृढ़ संकल्प लीजिए, नो टोबैको, अब और तंबाकू नहीं।

तो साथियों, अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है। ये कार्यक्रम विविध भारती के लिए आकाशवाणी कोटा की प्रस्तुति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है,

0: गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हुर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकननेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र

0: बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना, आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: लगाए मस्त पवन है चंचल धारा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

0: país y se trata de la artista y se trata de la
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आपसे भी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है,
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है,
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ

0: से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं।
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एमजी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इसे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डिजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं दो हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाया तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना।
2: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना।
3: देसी
4: छोड़ दीजिए ना।
3: अरे अरे सुनो तो।
4: नहीं सुनती।
3: ओफो, अरे बात तो सुनो
4: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
3: ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
3: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
3: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: चीजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूँ। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की
0: साड़ी। ओह डेजी।

0: उस दिन मैं सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
1: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
1: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
1: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
1: भाई उसे दवा दी जा रही है,
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
1: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं।
1: तेजी,
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
1: तो क्या करूँ मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
1: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
1: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
1: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
1: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
1: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने कुरूप बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
1: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
1: अच्छा छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
2: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
1: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों जी?
0: जी
2: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
2: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसी फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
1: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
2: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
2: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है? सो रहा है?
0: वो तो बहुत बीमार है, दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
1: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
2: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है?
1: Well, but that doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
2: अच्छा मैं चलता हूँ, भाई कुछ जरूरी काम है। चलो डेजी।
1: ओके
0: अच्छा,
1: बाय डॉक्टर, बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
1: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
1: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
1: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
1: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जाँच कर लो।
1: जाँच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जाँच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
1: जैसी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
1: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
0: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
1: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
0: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
1: मैं घसीट लाया? ये कहो, बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
0: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
1: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी के साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
0: क्या सवाल।

0: naman mo kon, basarakay. Maya Benny!
1: Tumikya ho, gae.
0: Tumas sa zada, Benny, kis poto sa pair karti ho. Tumas ki puja karti ho. Lekin, lekin abya sab nahi hoonga. Ye poto abya nahi rahi, gae!
1: Oh, मिल गया संतोष। बेनी, मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
2: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
1: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
2: कैसी शंका?
1: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
2: ओह डेजी, तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
1: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
2: नहीं।
1: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
2: लॉरेंस को? नो नो, नेवर। वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
1: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
2: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
1: आप ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
2: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो, क्या हुआ?
1: इस बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
2: क्या?
1: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
2: क्या?
1: लेकिन वास्तव में डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
2: बोलो।
1: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
2: मैं?
1: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर, उसे देख लीजिए डॉक्टर।
2: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। I'm sorry.
1: Please, doctor, please, मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज।
2: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
1: प्लीज डॉक्टर।
2: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
1: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले, ये बेनी का प्रेत है।
3: बेनी का प्रेत?
1: हाँ, मैं चीख

0: जी, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा, तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
1: डॉक्टर लॉरेंस।
2: ओ, डॉक्टर रामदास,
1: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
2: बैठ जाइए
1: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा जल बसाना
2: जी,
1: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा ना ले, आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
1: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
1: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: व्हाट डू यू मीन डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
1: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
1: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
3: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
1: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
3: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
1: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
3: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
1: नहीं, नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
3: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
1: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
3: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर,
1: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
3: नो नो नो,
1: क्यों डॉक्टर, सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उरण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए और इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
3: डॉक्टर, डॉक्टर
1: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
3: सच है, सच है डॉक्टर, लेकिन उससे उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
1: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
3: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
1: नहीं कहूंगा।
3: थैंक यू।
1: नहीं कहूंगा।
3: थैंक यू डॉक्टर।
1: क्योंकि ना कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर लॉरेंस, मैं अब चलता हूं।
3: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी

0: उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
1: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
0: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
1: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
0: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
1: लॉरेंस, तुम अचानक,
0: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
1: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
0: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
1: मैं भी तुम्हें,
0: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
1: भुला दूंगी, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
0: वो डेजी, मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
1: हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ।
0: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
1: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
0: डेजी
1: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
0: ये क्या कह रही हो तुम डेजी?
1: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
0: नहीं, नहीं, डेजी,
1: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ली।
0: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
1: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह
0: सकते। डेजी ये सच नहीं है, मैं कहता हूँ डेजी।
1: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: ओह नो,
1: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
0: विदा?
1: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
0: नहीं, था। नहीं, डेजी, डेजी, डेजी।
1: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना।
0: अरे,
1: अरे, अरे, अरे ये आपको क्या हुआ है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
0: डेजी, ये मेरी नसें टूट रही है डेजी। डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है डेजी।
1: नहीं लॉरेंस, नहीं नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो

0: मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई, डॉक्टर आए, लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना छुल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: चार बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल

0: देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। दुमका स्थित सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभागों, अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इसके तहत 20 जून तक विश्वविद्यालयों और इसके अधीन संचालित सभी स्नातकोत्तर विभागों तथा महाविद्यालयों में नियमित शैक्षणिक और पठन पाठन संबंधी गतिविधियां स्थगित रहेंगी। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपनी बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी रणनीतिक निवेश के जरिए या स्वयं नई इकाई स्थापित कर फिनटेक कारोबार शुरू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अंडर 18 एशिया कप के पूल ए के अपने दूसरे मैच में आज कोरिया को 3-1 से पराजित कर दिया। मलेशिया और कोरिया के खिलाफ जीत के बाद भारत अब पूल ए तालिका में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नई जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिली मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
1: जी,
2: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
1: जी,
2: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
1: जी।
2: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
1: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में
2: जी।
1: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
2: मैं तो अच्छी हूँ
1: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
2: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे इलाहाबाद में पढ़ते थे।
1: अच्छा।
2: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
1: जी,
2: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
1: अच्छा जी।
2: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
1: ही हैं।
2: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
1: अच्छा।
2: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बंबई थी
1: जी, बिल्कुल।
2: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
1: जी,
2: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
1: अच्छा जी।
2: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे
1: जी,
2: रावल जी।
1: अच्छा।
2: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु रॉय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने, और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
1: जी।
2: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा।
2: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
1: बन गए। थी कौन से अब, सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें
2: गया? कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
2: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल।
2: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी, एक्टर
2: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए
1: और
2: प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मितुल जी आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
2: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
1: वाह क्या बात है।
2: हेमंत कुमार,
1: हेमंत कुमार की आवाज में।
2: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
2: हाँ
1: हाँ जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं। हाँ। प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कभी प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती थी।
0: जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई, जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है, तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी,
1: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
0: जी।
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ

0: गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था,
1: हाँ
0: तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
1: अच्छा जी
0: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
1: इतनी फ्रीडम थी।
0: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना के दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
1: जी
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी, और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
0: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी, वो गर्म है,
0: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा।
1: अच्छा।
0: मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियां तो दी होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू
1: जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ।
1: अच्छा।
0: सब तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने बोल दिया माँ पर, मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को लेके। तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं ना, तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी।
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो यूनियन था
1: वो संपन्न
0: विवाह का, तो वो खुशी खुशी उसकी समापन हुआ।
1: जी जी, तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया,
0: घर में एक आम पिता की तरह,
1: आम पिता की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति,
0: बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
1: जी, जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं

0: से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहाँ बहुत नजदीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
0: एक मतलब कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। हाँ। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है,
1: हाँ,
0: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
1: हाँ। और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी
1: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: हाँ। और तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे मुंबई
0: जी। हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त।
0: हाँ, जी।
1: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
0: जी, क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने?
1: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई थी,
0: जी,
1: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था।
0: बहुत कुछ।
1: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन यही कविता है जो उन्होंने
0: लिखी
1: उसी वक्त लिखी,
0: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ। और वहां से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
1: हाँ
0: जी। तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
1: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
0: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी
1: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत।
1: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे ना कि निकलो यहां से। नहीं नहीं देखिए, ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
0: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
1: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
1: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात।
1: सही बात
0: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
1: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा है।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है, आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है इस गाने के सिवाय वो
0: कोई
1: पूरी
0: गाना
1: नहीं होती।
0: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ। तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
1: यही
0: साबरमती
1: के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं,
0: भील जाति,
1: तो भील जाति के लोग,

0: तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी। हाँ,
1: अच्छा
0: तो वहां क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे।
1: जी
0: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
1: जी
0: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
1: नहीं है,
0: सारे गामा नहीं है,
1: कॉपी की भी नहीं है।
0: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है। ठीक है, तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया,
1: जी
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
1: बिल्कुल।
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछी रे, आज भी पिंजरे के पंछी रे सुन के भी लोग रोते हैं
1: बिल्कुल, वो
0: कि
1: दर्शन
0: एक
1: जो
0: छोटे
1: उन्होंने
0: पिंजरे में
1: दिया।
0: पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे
1: अध्यात्म के
0: संसार की
1: गीत ये।
0: हालत क्या हो गई,
1: हाँ
0: भगवान
1: हाँ
0: कितना बदल गया
1: बिल्कुल
0: इंसान। हाँ, और मतलब ये मैं कहूं कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी।
1: देखी
0: हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको
1: मुखड़ा
0: क्या
1: देख ले
0: बताऊं,
1: दर्पण में।
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक है।
1: सीरीज है उनके पास, और आज
0: हाँ,
1: भी उनके
0: सुनते हैं लोग,
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद
0: सुनते
1: करते
0: हैं।
1: हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
0: पिंजरे के पंछी सुनिए।
1: चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था, शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे। तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं, और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, सब लोग तुम क्यों रो रही हो, मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: में आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे नारे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं
0: कि
1: अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों
0: में
1: कुछ लिखा है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि अब दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।
2: गेमवे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस हमले को गलत बताया है। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपनी बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहा है। कंपनी रणनीतिक निवेश के जरिए या स्वयं नई इकाई स्थापित कर फिनटेक कारोबार शुरू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। पलामू जिले से पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि ये अपराधी सड़क निर्माण कर रही एक निजी कंपनी के कैंप पर गोलीबारी करने की योजना बना रहे थे। इनके पास से 2 9mm पिस्टल, 2 कारतूस, 6 मिस फायर गोलियां, 1 खाली मैगजीन और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर DSP अमित रविदास ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: FM 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। संध्या के 5:02 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है रोजगार एवं विकास के पथ प्रदर्शित से संबंधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल।

नया संकल्प नई पहल की इस कार्यक्रम में आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, नमस्कार श्रोताओं। गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। चलिए मौसम का आनंद लेते हुए हम भी अपने इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं खूबसूरत सा ये गाना।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: श्रोताओं, आधुनिक संचार ने मानवीय जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। इसने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है, जिससे भौगोलिक दूरियां खत्म हो गई है। व्यापार और शिक्षा में अभूतपूर्व क्रांति आई है और लोगों के बीच विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान बहुत आसान और त्वरित हो गया है। मानव जीवन में इन व्यापक बदलावों को कई बिंदुओं से समझा जा सकता है। त्वरित और सीमा मुक्त संपर्क, समय की बचत। पहले चिट्ठियों के जवाब में हफ्तों लग जाते थे, वहीं आज वीडियो कॉलिंग और मैसेज से पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात की जा सकती है। दूरी का खत्म होना, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने दूर दराज के इलाकों को भी आपस में जोड़ दिया है। त्वरित संपर्क, स्मार्टफोन, ईमेल और व्हाट्सएप, टेलीग्राम के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में सेकंडों में संपर्क किया जा सकता है। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम ने लोगों को सामाजिक और पेशेवर रूप से जुड़ने का नया मंच प्रदान किया है। शिक्षा और ज्ञान तक पहुंच डिजिटल शिक्षा, इंटरनेट और स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करना संभव हो गया है। ज्ञान विज्ञान वेबसाइट पर हर विषय की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार तकनीक ने कैसे बदल दिया मानव का जीवन, इस विषय पे हमने जाना और कार्यक्रम भी अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आपके साथ खूबसूरत सा ये गाना।
1: अरे
2: चुपके से दिल दे दे,
1: नहीं ते
2: नहीं ते

0: इस गीत के बाद लीजिए सुनी भेंटवार्ता स्वच्छ भारत मिशन। भेंटवार्ताकार है राम कुमार और इसे बातचीत कर रहे हैं प्रकाश कुमार राणा।
1: सफलता के लिए बहुत सी परंपराओं और कुरीतियों को तोड़ना होगा, विभिन्न समुदायों की भागीदारी बढ़ानी होगी और सरकार को हर स्तर पर गंभीर प्रयास करने होंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, जन सुविधाएं स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है, यह महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने का समय है। तभी हम खुले में शौच करने की शर्मिंदगी से मुक्त होकर भारत को सही अर्थ में स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं पेयजल स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग के राम कुमार जी, जो कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक हैं। तो राम कुमार जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, ये योजना क्या है?
2: ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मूल उद्देश्य हमारे ग्रामीण परिवेश को खुले में शौच से मुक्त करना है। एक ऐसी कुप्रथा जो वर्षों से चली आ रही है, जिससे हमारा जीवन स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। ग्रामीण परिवेश का जीवन स्तर में हम मूल चूल सुधार, आवश्यक सुधार जो हम चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सभी ग्रामीण परिवेश को सदा के लिए खुले में शौच मुक्त करने का अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चलाया जा रहा है।
1: ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, ये कब लागू किया गया और इसका क्रियान्वयन कैसे करते हैं आप?
2: ऐसे योजना हमारी विभिन्न नामों से 1996 से चल रही है, लेकिन 2 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, एक नए रूप में, एक नए उद्देश्य के साथ, जिसका मूल उद्देश्य था सिर्फ शौचालय निर्माण न करके ग्रामीण परिवेश को खुले में स्वच्छ से मुक्त करना, जिससे ग्रामीणों की ग्रामीण परिवेश को एक स्वच्छ एनवायरमेंट दिया जा सके और उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार प्राप्त किया जा सके।
1: इसमें कैसे लाभुकों को शामिल करते हैं और कितना प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इसका क्या तरीका है?
2: इसके तहत 12,000 की प्रोत्साहन राशि ऐसे लाभुक जो जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जिसे हम सीमांत किसान और लघु किसान कहते हैं, जिनके पास भूमिहर जो मजदूर हैं, जो भूमिहर मजदूर हैं, दूसरे से जगह से वासित हैं उस गांव में, सभी वो SC ST हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं और विधवा परिवार जो वुमेन हेडेड फैमिली है
1: जी,
2: ये सभी लोग इस लाभुक की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए वर्ष 2012 में एक बेसलाइन सर्वे किया गया, जिसमें ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया गया जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है और वो शौचालय बनाने में असमर्थ है। इस बेसलाइन 2012 के अनुसार ही ऐसे लोगों को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराती है
1: जी। खुले में मल त्याग खासकर महिलाओं का अपमान है और उनके स्वाभिमान पर खुली आघात है। इससे पता चलता है कि साफ सफाई केवल स्वास्थ्य का ही मुद्दा नहीं, बल्कि यह जीवन जीविकोपार्जन और इन सबसे ऊपर मानवीय गरिमा को भी प्रभावित करता है। तो आप बताएं कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन कैसे करते हैं और लाभुक को लाभ कैसे पहुंचता है
2: जी? इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग प्रखंडों को, पंचायतों को चयन करते हैं, ग्राम सभा के द्वारा ये चयन होके आता है, जो मुखिया काफी एक्टिव होते हैं, जहां के ग्रामीण काफी एक्टिव होते हैं, उनको प्रायोरिटी में चयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 15-16 में इस जिले के सभी 16 प्रखंड पंचायतों का चयन इस हेतु किया गया था, ODF हेतु लक्षित किया गया था। इसी दौरान हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा और ग्रामीणों के सकारात्मक पहल के कारण चमकता चुरचू अभियान चुरचू प्रखंड को ODF करने का कार्यक्रम चलाया गया। विगत 2 माह से निरंतर प्रयास करके लगभग शौचालय निर्माण का कार्य सभी चिन्हित लाभुकों के लिए चमकता चुरचू अभियान के तहत चुरचू में करा लिया गया है। इसके कार्यान्वयन की पद्धति यही है कि हम लोग पहले जो चिन्हित लाभुक हैं उनके अनुसार ग्राम जल स्वच्छता समिति को 12,000 की राशि उपलब्ध करा देते हैं और उस 12,000 राशि को उपलब्ध कराने के बाद ग्राम सभा के द्वारा बैठक की जाती है कि ऐसे लाभुक जो अपना शौचालय स्वयं बनाना चाहते हैं, बनाने को इच्छुक हैं, जो चिन्हित परिवार में आते हैं, जो बेसलाइन सर्वे में जिनका नाम है, उनको कहा जाता है कि भाई आप अपना शौचालय बनवा लो और जो पहले शौचालय बनाएगा उससे पहले उसकी राशि उपलब्ध होगी। तो पहले आओ पहले पाओ पाओ का ये एक रेस टाइप का, एक कॉम्पिटिशन टाइप का लोगों में किया जाता है, ताकि एक देखा सीखी लोग सीख सकें और अपना अपना शौचालय बना सकें। जहां तक देखा गया शौचालय की मांग बहुत देखी जाती है, हर कोई चाहता है कि मेरा शौचालय बने, लेकिन

0: नहीं, शौचालय का निर्माण सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन पे की जानी चाहिए और वही हम लोग प्रमोट भी करते हैं। अगर वो दूसरे की जमीन पे करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, वो उसे अक्वायर कर लेगा तो दिक्कत होगी उनके लिए, तो बेहतर यही होता है कि
1: अपने से क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलता है और इसके विषय में आप क्या कहना चाहिएगा।
0: एक बार शौचालय बनने के बाद लोगों को एक बार समझ में आ जाता है कि भाई ये शौचालय क्यों बनाया गया, उनको ये बात समझाने की जरूरत पड़ती है। कई बैठकें आयोजित की जाती है, बैठकों में हम चर्चा करते हैं कि अगर आप खुले में शौच को जाते हैं तो इस खुले में शौच जाने की वजह से जो हमारी जो बच्चियां हैं उनका हाइट हम लोग देख रहे लगातार गिरता चला जा रहा है
1: जी।
0: तो अभी एक किसी पत्रिका में मैंने पढ़ा था, WHO का सर्वे आया था, उसमें बताया गया था कि लड़कियों का कद कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है ये खुले में शौच जाना। इसमें जो कृमि है, इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे खाने तक, हमारे मल जो है मुख तक आता है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं देखी जा रही है। दूसरी बात, बरसात के दिनों में अगर हम देखते हैं तो खुले में शौच जाने से जो शौच का जगह होता है वहां से जो गंदगी है वो शौच किसी न किसी रूप में हमारे जल स्रोत तक पहुंच जाता है और उससे बुरी तरह से दूषित करता है, प्रभावित करता है। अब उस जल को हम ग्रहण करते हैं तो इस तरह से हम न सिर्फ बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो जब इस तरह की चर्चा लोगों में की जाती है तो उनको एक सेंसिटाइज करने का प्रयास किया जाता है कि आपके इस गलत बिहेवियर के चलते, गलत आदतों के चलते ये असर पड़ रहा है, आपके घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक शौचालय जो बनाया गया है जिसका नियमित इस्तेमाल करके इन सब चीजों को रोका जा सकता है और मल से मुख तक का एक बैरियर को क्रिएट करने का कार्य इस शौचालय के द्वारा किया जाता है, जिससे मानव मल का समुचित निपटान किया जा सके।
1: शौचालय बनाने के बाद रख रखाव में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि स्वच्छता जहां होगा वहां रोग या बीमारी का प्रभाव वहां पे कम पड़ेगा।
0: देखिए, शौचालय अगर मेरा है तो उसका रख रखाव करने की जिम्मेवारी हमारी है। हम अपना घर बनाते हैं, हम आंगन बनाते हैं तो हम देखते हैं हर पर्व त्योहार में डेली उठ के उसमें झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, तो अगर हम उसका नियमित उपयोग करेंगे तो उसको साफ करने की भावना हमें जगेगी। लेकिन अगर बना के उसे छोड़ देंगे तो अन्यत्र कार्यों के लिए वो उपयोग किया जाएगा और वो कुछ दिनों के बाद डिफंक शौचालयों की सूची में आ जाएगा। इससे सरकारी राशि का न सिर्फ दुरुपयोग होगा बल्कि एक जो उनको सुविधा दी गई थी उस सुविधा से वो फिर दोबारा वंचित हो जाएंगे और उनका घर फिर से बीमारियों से पीड़ित रहेगा और वो बाकी चीजों के लिए भी परेशान ही रहेंगे।
1: और हमारे ग्रामीण समाज में छोटे परिवार बड़े परिवार दोनों ही रहते हैं और खासकर देखा जाता है कि अगर शौचालय बन गया, मेरा तैयार हो गया, जहां आत्मसम्मान की बात आती है तो वहां क्या करते हैं कि दो या तीन परिवार तो शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, बाकी लोग क्या करते हैं बाहर चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए ताकि वे अपने शौचालय का उपयोग करेंगे और अपने गांव को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को वे मतलब इस गंदगी से दूर रखेंगे।
0: देखिए, खुले में शौच मुक्त की मूल भावना यही है कि उस ग्रामीण परिवेश में जितने लोग रहते हैं सभी शौचालय का नियमित उपयोग करें
1: जी।
0: कोई भी एक भी व्यक्ति बाहर शौच के लिए ना जाए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या जवान हो, या स्त्री हो, या पुरुष हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये पूरा हमारा गांव, पूरा हमारा समाज, पूरा प्रखंड खुले में शौच मुक्त हो गया। तो हम देखते हैं कि महिलाओं को इस शौचालय की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है क्योंकि अगर उन्हें शौच आता है तो या तो वह रात होने का इंतजार, अंधेरा होने का इंतजार करती है, या सुबह सूर्य उगने से पहले जाती है। अगर बीच दौरान में कभी उनकी तबियत खराब हो गई, कुछ हो गई, तो उनके लिए बड़ा एम्बेरेसिंग हो जाता है कि भाई वो शौच के लिए कैसे जाए। ऐसे में उनको पेट दर्द और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो महिलाएं एक ऐसे साधन है, अगर महिलाओं को हम तरीके से सेंसिटाइज कर लें तो वो एक इसे आंदोलन का रूप दे सकती हैं। और जो हमारे लोकल महिला मंडल ग्रुप्स होते हैं, जल सहिया होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं जिसमें सेविका सहायिका होती है, इन सबके ग्रुप के द्वारा महिलाओं को, व्यक्तियों को, बच्चियों को सेंसिटाइज करने का प्रयास किया जाता है ताकि वो अपने व्यवहार में एक परिवर्तन लाते हुए शौचालयों का नियमित उपयोग करें, जिससे कि किसी तरह की परेशानियों का सामना उन्हें भविष्य में न करना पड़े। क्योंकि अगर वो बाहर जाते हैं तो न सिर्फ उन्हें रात में सांप का डर है, बरसात में गिरने का डर है, और अगर छेड़खानी वगैरह हो गई तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है
1: और गांव में जो जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, हमारे जल स्रोत हैं,
0: और सबसे बड़ी बात दूषित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि इस मानव मल का समुचित निपटान किया जा सके और हर व्यक्ति खुले में शौच जाना हमेशा के लिए बंद कर दे।
1: तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गांव में आप कैसे कैसे प्रतिनिधियों को आप सचेत किए हैं या तो इससे जोड़ के रखे हैं ताकि ये जो कार्य है आपका सफल हो और हमारे समाज, हमारा गांव इस मुझे खुले में शौच से मुक्त हो।
0: इस कार्यक्रम को गांवों तक ले जाने के लिए, वहां के ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए हमारा एक बहुत सशक्त संस्था है, वो ग्राम जल स्वच्छता समिति है। ये संस्था अन्य संस्थाओं जैसे VHND की संस्था है, आपके विद्यालय की समिति, विद्यालय समिति, विद्यालय प्रबंधन

0: प्रबंधन समिति है, इसके अलावा आंगनवाड़ी की जो समिति है, इन सबके साथ कोऑर्डिनेट समन्वय स्थापित कर बैठकों को, नियमित बैठकों को आयोजित करते हैं, क्योंकि और इसके बारे में इसकी सभी जानकारी लोगों को देते हैं, उन्हें सेंसिटाइज करने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि भाई आप खुले में शौच ना जाएं, अगर खुले में शौच जाते हैं तो इतनी सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, और एक व्यवस्था, एक सुविधा जो सरकार के द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई है उसका नियमित उपयोग करें तो आपके जीवन स्तर में, आपके स्वास्थ्य में, आपके आर्थिक स्थिति में काफी अपेक्षित सुधार पाया जा सकता है,
1: बदलाव हो सकता है।
0: हमारे यहाँ से ये इस वित्तीय वर्ष के पूर्व तक, मतलब ये अभी हम लोग 16-17 में आ गए, 15-16 तक जितने हमारे विद्यालय थे उनको शौचालयों से आच्छादित किया जाना था। उसके बाद कुछ कॉरपोरेट के सहयोग से, जैसे हमारे NTPC है, CCL है, और कुछ हम लोगों के द्वारा, इस विभाग के द्वारा, जिला जल स्वच्छता मिशन प्रकल्प के द्वारा, ऐसे सभी विद्यालय जो शौचालय की सुविधा से विहीन थे उन सबों को शौचालय के निर्माण से आच्छादित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जितने भी सरकारी भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें भी शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। कुछ 80 या 81 शौचालयों की सूची अभी प्राप्त हुई है, जो सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहां शौचालय की सुविधा नहीं है वहां शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है
1: जी।
0: उसके बाद अभी हमारे स्कीम में जो इस वित्तीय वर्ष से किसी भी संस्थागत शौचालयों का निर्माण नहीं किया जाना है, क्योंकि जो हमारे निर्धारित लक्ष्य थे उसे प्राप्त किया जा चुका है। और अगर हम वैसा करते हैं तो हम एक ही योजना का दोहरीकरण करते हैं बार बार, जिससे पैसा का अनावश्यक दुरुपयोग होगा, अनावश्यक उसका व्यय होगा।
1: ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का निर्धारित लक्ष्य क्या है
0: जी? हमारा जो लक्ष्य था इस वित्तीय वर्ष का 18,108 शौचालय बनाए जाने थे
1: जी।
0: इसके विरुद्ध हम लोगों ने 20,373 शौचालयों का निर्माण
1: हो चुका है
0: जी, किया है। इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस वित्तीय वर्ष में पूरे हजारीबाग जिले को ODF खुले में शौच मुक्त के लिए लक्षित किया गया है, और हम लोगों का प्रयास होगा, हम सभी माननीय, हमारे जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, हमारे जितने भी माननीय विधायकगण, सांसदगण हैं, हमारे जितने भी नेचुरल लीडर्स हैं, धार्मिक लीडर्स हैं, सबसे हम अनुरोध करेंगे कि ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करें, ग्रामीणों से चर्चा करें और ये प्रयास करें कि भाई वो अपना शौचालय बनाएं और यह प्रोत्साहन की राशि सीधे अपने खाते में पाएं, जिससे कि शौचालय का समुचित लाभ उन्हें प्राप्त हो सके और इससे न सिर्फ वो बल्कि अपने समाज को भी लाभान्वित कर सके।
1: तो अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारा समाज, हमारा गांव खुले में शौच से मुक्त हो, इसके लिए आप अंत लोगों को यही मानना होगा कि स्वच्छ भारत के निर्माण एवं देश की छवि सुधारने का यही सही समय और अवसर है। जब स्वच्छता संबंधी बातें आदतों में शामिल हो जाएगी तो बदलाव भी खुद ब खुद दिखने को मिलेगा। तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी अनेक जानकारी दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना स्वच्छ भारत मिशन, इन पर जानकारी दे रहे थे राम कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे प्रकाश कुमार राणा। इसी के साथ नया संकल्प नई पहल के इस कार्यक्रम से रानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नया संकल्प नई पहल। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। संध्या के 5:30:37 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है सूचना के साथ मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग।

0: युवा तरंग कार्यक्रम सुनने वाले आप तमाम दोस्तों को रानी का प्यार भरा नमस्कार जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, है ना? चलिए अच्छी बात है, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम युवा तरंग। फिलहाल हम आपके साथ मिलकर सुनते खूबसूरत सा ये गाना।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे तंबाकू उत्पादों के सेवन का क्या है पड़ रहा है समाज एवं युवाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव, क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। दोस्तों, हम आपको बता दें, तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी का सेवन मानव जीवन और समाज पर बेहद घातक प्रभाव डालता है। इससे न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य और उसकी आर्थिक स्थिति की बर्बादी होती है, बल्कि परिवार और पूरा समाज भी इसके दुष्प्रभाव की चपेट में आ जाता है। मानव स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। गंभीर बीमारियां, तंबाकू में मौजूद निकोटीन और अन्य रसायन फेफड़ों का कैंसर, मुंह और कैंसर, गले का कैंसर और टीबी जैसी जानलेवा बीमारियों का प्रमुख कारण है। हृदय और सांस की समस्या भी हो सकती है। अत्यधिक सेवन से मानसिक तनाव, घबराहट और सोचने समझने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, आर्थिक और पारिवारिक क्षति भी होती है। वित्तीय बोझ, तंबाकू की लत के कारण व्यक्ति की दैनिक कमाई का एक बड़ा हिस्सा नशे में खर्च हो जाता है, जिससे घर का बजट बिगड़ जाता है। दोस्तों, तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा इस लत को छुड़ाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमें कैसे नशे की लत से बचना है इसके बारे में खुद से सोचिए, क्योंकि एक बार यदि लत लग गई तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सावधान रहिए, नशे से बच कर रहिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए और जीवन में आगे बढ़िए, तभी हम अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। फिलहाल हम आपके साथ मिलकर सुनते खूबसूरत सा ये गाना।

इस गीत के बाद लीजिए सुनिए दोस्तों भेंट वार्ता। विषय है क्या है मानव अधिकार का इतिहास, क्या है मौलिक अधिकार एवं मानव अधिकार में अंतर। जानकारी दे रहे हैं हिमांशु कुमार सिन्हा, इनसे बातचीत कर रहे हैं विश्वनाथ सोनी।

0: श्रोताओं कहते हैं ना कि रास्तों की अगर सही जानकारी है तो मंजिल मिल ही जाती है, उसी तरह से अगर हम देखें तो गणित विषय के बारे में कि अगर उसके बारे में सही तरीका सही रणनीति की जानकारी हो तो गणित बोझिल नहीं एक रुचिकर विषय है। गणित को हम कैसे बेहतर तरीके से आत्मसात कर सकते हैं, गणित को लेकर कैसे हम भविष्य गढ़ सकते हैं, इन तमाम विषयों पर आज बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हैं शिक्षक, जिला स्कूल प्लस टू के शिक्षक हैं गिरीश कुमार रजक जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं गणित के बारे में, और परीक्षाओं की भी शुरुआत होने वाली है तो हम जानेंगे कि गणित की तैयारी बच्चे किस तरह से करें। 10th और 12th की परीक्षाएं होने वाली हैं
1: जी,
0: तो इस विषय को लेकर कि चूंकि अभी एक ऐसा दौर से भी हम लोग गुजरे हैं जब कोविड का दौर पूरा चला, बच्चे घर में रहें और जिस रूप में बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए उस रूप में नहीं हो पाई है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं गिरीश। तो सबसे पहले आप बताइए कि इस माहौल में बच्चों को किन बातों की जानकारी होनी चाहिए और किस तरह की सतर्कता बरतें और किस तरह से वो अपनी पढ़ाई करें।
1: जी, आपने सही कहा कि मैथमेटिक्स जो है सो कोई बहुत भारी सब्जेक्ट नहीं है, उसको देखने का सिर्फ नज़रिया लोगों में अलग अलग है। हम मैथमेटिक्स जो है कि एक दिनचर्या वाला विषय है जिसको हम डेली सोने के साथ सोते हैं, उठने के साथ उठते हैं। हम देखें तो ये कहा जाए कि मैथमेटिक्स हमारे जीवन के साथ साथ चलता रहता है शुरू से ही। आज हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें मैथमेटिक्स जो है रचा बसा हुआ है। तो बच्चों को ये कभी नहीं डरना चाहिए कि मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के तौर पर नहीं देखें। इसको जैसे हम लोग दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं बस उसी के अनुसार समझना चाहिए कि मैथमेटिक्स जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। तो इसलिए इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर ना लेकर के एकदम इसको इजी वे में लें और समझें कि जो हम डेली सब्जी खरीदने जाते हैं, दुकान जाते हैं, मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, तो ये गन्ना ही तो मैथमेटिक्स है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके अनुसार हमको समझना चाहिए कि सबसे पहले हम जो कंसेप्ट 6th क्लास से ही लोगों को लेना चाहिए। इसमें दिक्कतें हम जो अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें दिक्कतें ये आई हैं कि बच्चे जब 9th में एडमिशन लेते हैं, 10th में आते हैं, यहाँ तक कि हम 11th में जब आते हैं बच्चे, तो हम क्या क्या कमजोरियाँ हैं वो हम थोड़ा सा गिनाना चाहेंगे आपको कि कंसेप्ट बच्चों में नहीं रह पाता है। हम लोग के दौर में था कि कंसेप्ट कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स तो बिल्कुल रटने वाला चीज़ नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर, लेकिन कुछ चीज़ें याद रखना

हाँ, बहुत जरूरी है। वो सिर्फ मैथ्स में नहीं, वो हर एक सब्जेक्ट में है। जब तक उस चीजों को हम दिमाग में नहीं लाएंगे, तब तक वो हमको बोझिल लगेगा। तो सपोज करिए, जैसे हम देखे हैं बच्चों में क्या कठिनाई आती है, कि हम अगर किसी भी चीज का, हम अगर मान लीजिए एरिया वॉल्यूम की बात करते हैं, तो अगर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, तो हम वॉल्यूम अगर कोई दिया हुआ है, उसका भुजा दिया हुआ है, उसमें आयतन निकालना है, तो बच्चे निकाल लेते हैं। लेकिन वही चीज को अगर पलट देता है, कि हम अगर घन का हम दे दिए हैं कि आयतन है, हाँ दिया हुआ है, और अगर उसको भुजा निकालना है, तो बच्चों में क्यूब रूट नहीं आता है बच्चों को। तो ये सब, ये बेसिक चीजें जो है, सो एक तो साथ साथ चलना चाहिए, जो 6 7 क्लास से ही बच्चों को ध्यान देना चाहिए। तो वो सब जो है सो चीजें आ जाती हैं। इस टाइप से मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए, कि डायरेक्ट आप बुक लेकर के उसका सीधा सीधी हम की न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही उसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो आते हैं, वो हमारे लिए नए होते हैं, जो हमको बहुत चीज समझ में नहीं आती बात। तो शिक्षकों से या अभिभावकों से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो जो चैप्टर्स जैसे स्टार्ट करें, तो उससे रिलेटेड जो दैनिक जीवन में जो वस्तु हम यूज करते हैं, उसके बारे में बच्चों को जरूर बताना चाहिए। उससे बच्चों में एक कंसेप्ट क्लियर होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि हम बच्चों में कहाँ दिक्कत होती है, अगर वॉल्यूम की बात करें, तो हम देखते हैं कि बच्चों में कि वो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो अब बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कर्व्ड सरफेस क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो ये सब इस तरह तरह की परेशानियां होती हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों को है कि सबसे पहले अब उस चीज का, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, कि अगर हम देखते हैं कि कोई कोण है, शंकु है, तो उसको अब कर्व सरफेस एरिया, तो हम उसको डायरेक्ट किताब में ले जाएंगे कि कर्व का कोण का आयतन जो होता है सो इतना होता है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना, तो वो रटने का कोशिश करें तो स्वाभाविक बच्चे भूल जाएंगे। सबसे पहले बच्चे ये कंसेप्ट लें कि उसका वक्र पृष्ठ क्या है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या है। तो एक साधारण सी बात है कि हर एक घर में कोन शेप का हम आइसक्रीम खाते हैं, तेल डालने वाला रहता है, तो ये सब चीजों को उठा करके वो देखें, और उसको कर्व क्या है, टोटल सरफेस क्या है, ये सब के बारे में वो पहले क्लियर हो जाए, तो वहां से एक कंसेप्ट बनता है। अब अगर हम चैप्टर में जाते हैं और उस चीजों को जानते हैं, तो उनको पता चलता है कि हमको इस चीज के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, जिसका आंसर हमको करना है। डायरेक्ट हमको बुक में जाने से थोड़ी सी परेशानी होती है। तो बच्चों में से ये सब जो पीछे के जो चीजें हैं, उनको हर हालत में जो है सो याद रखना चाहिए, और उस फिगर को देखें, समझें किनारा क्या होता है। बच्चे जो हैं सो अब किनारा क्या है, उसका सरफेस क्या है, तो ये सब चीजें जो हैं सो घर में जो इक्विपमेंट्स हैं, छोटी छोटी माचिस का डिब्बा आयतन हो गया, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसका डाइस जो है, उसका ये घन का काम करता है, तो वो सब फेस देख करके वो समझें कि ये सब चीजें क्या है, घन घनमूल। सबसे बड़ी चीज है कि आप देखिएगा कि या छोटी छोटी चीजें, अगर हम मल्टीप्लिकेशन हम एक बार पढ़ा रहे थे, तो यहां तक कि 11 का बच्चा भी आता है, अगर उसको 14 × 6 आ गया एक बार कैलकुलेशन बीच में, तो 14 × 6 को मल्टीप्लाई करने के लिए वो मोबाइल निकाल के मल्टीप्लाई करता है, या तो फिर कॉपी में मल्टीप्लाई करेगा। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ समझ मैथमेटिक्स समझने के चीजों के साथ साथ कुछ ऐसा दिमाग में होना चाहिए कि कुछ चीजें हमको याद रहनी चाहिए, और ये हाँ अभ्यास में रहना चाहिए। और ये जरूरी है कि अभ्यास में ये याद आपको कब रहेगा, कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस जरूर मांगता है। ये मैं बच्चों से कहूंगा कि ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, कंसेप्चुअल चीजें जो हैं, वो जो दैनिक जीवन में उस चैप्टर से रिलेटेड है, उसको आप देखें, हाथ से छू कर देखें, सामने से देखें, डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल्स और किताब में ना जाए, आपको मैथमेटिक्स बहुत ईजी लगेगा। और ये सब देखने के बाद फिर आप न्यूमेरिकल्स में जाएं, जो छोटी छोटी एक टाइप के सवाल से उनको अभ्यास करें, जो अभ्यास करने के बाद आप हम देखें कि कुछ लड़के हम एक थ्योरी बता दिए, उससे रिलेटेड सवाल बनाने लगे, बन जाता है, दूसरा सवाल लिए, 4 लाइन आगे बढ़े, फंस गया 5वां लाइन में। तो ये चीज जो जहां फंस जाती है बात, वहां आप हाईलाइट करिए। हाईलाइट करने के बाद क्या हुआ कि उसको आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए कि इस चीज में हम अटके थे, ये क्या चीज है, हम क्यों यहां फंसते हैं, उसको रियलाइज करिए।
इससे क्या होगा कि उस चीज पर आपका ध्यान अट्रैक्ट होगा और उस चीज आपका फिर धीरे धीरे दो बार तीन बार में आपको क्लियर हो जाएगा, जो हमेशा याद रह जाएगा।

0: गृह से हम लोग बातचीत करते हैं, मैथ के बारे में जो चर्चा होती है तो फॉर्मूला बेस्ट होता है, फॉर्मूला की बात आती है तो बच्चे यहाँ भूल जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण?
1: इसके पीछे कारण है कि बच्चे इसको डायरेक्ट रटना शुरू कर देते हैं। हम जैसे आप प्लस टू के बच्चों की बात करते हैं कि जैसे हम कैलकुलस पढ़ाते हैं तो कैलकुलस जो है सो उसका जो है सो सबसे पहले मान लीजिए कि इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं तो उसके पहले डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए, उसका सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके पहले जो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं उसका सारा, चूंकि मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर लिंक है एक दूसरे से, और हम अगर एक क्लास भी मिस करेंगे तो हमको अगला क्लास एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों से कंटिन्यूटी हम जरूर अपेक्षा करेंगे, कंटिन्यू रहें और कोई भी टॉपिक्स को कमतर नहीं आंकना है, हर एक चीज को आप रिलेट करके पढ़िए। तो फॉर्मूला की जो बात आती है कि भूल जाते हैं, उसमें एक ही चीज हमारे दिमाग में, हम भी थे अपने जमाने में उस समय हम भी भूलते थे, तो उसको जो है सो आप एक बच्चे फिर अब तो स्कूल खुल गई है तो अब स्कूल आने लगे हैं बच्चे डॉट्स क्लियर करने के लिए, भले अभी तक संख्या बहुत ज्यादा नहीं जुड़ पाए, संख्या नहीं आ पाई बच्चों की।
0: तो चलिए गिरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छी बातचीत हुई।
2: आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, बच्चों में गणित विषय की सही समझ, जानकारी दे रहे थे गिरीश कुमार रजक और इनसे बातचीत कर रहे थे सूरज रजक। इसी के साथ युवा तरंग कार्यक्रम से रानी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। संध्या के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष देश के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में आज सांसद ने कहा कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा और खूंटी के विधायक राम सूर्य मुंडा ने आज मुरहू स्थित एक आवासीय विद्यालय परिसर में 50 शैया वाले छात्रावास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सांसद ने बताया कि कल्याण विभाग की ओर से लगभग 2,25,00,000 रुपए की राशि से इस छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज परीक्षा केंद्र पर आज बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि दस्तावेज जांच में देरी के कारण वे समय पर परीक्षा कक्ष तक नहीं पहुंच सके और उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। छात्रों ने परीक्षा संचालन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर गुमला सदर अस्पताल परिसर में आज जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने तंबाकू नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करने वाले रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

0: बोकारो जिले में 25 वर्षीय एक महिला की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने आज बताया कि महिला ने 2 पड़ोसियों के बीच हुए विवाद को शांत कराने का प्रयास किया था, जिस दौरान उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, जिसके बाद एक अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जामताड़ा के गांधी मैदान में चल रहे 20वीं राज्य स्तरीय 3 दिवसीय बालिका खो खो प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आज रांची की टीम ने प्रतियोगिता जीत ली। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 18 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबले में रांची ने रामगढ़ को हराया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय FM 102.1 MHz पर श्रोताओं लीजिए पेश है श्रमिकों को संबोधित कार्यक्रम मेहनत कश।

कार्यक्रम मेहनत का सुनने वाले तमाम श्रमिक भाई बहनों को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार जोहार। साथियों, हाजिर है रविवार की शाम लेकर आपके उसी कार्यक्रम को जो कहती है आपके श्रम और मेहनत की कहानी और दिखाती है एक रोशन राह जिस पर चलकर आप सभी अपने जीवन को सुखी, संपन्न, शांतिमय और खुशियों का गुलशन बना सकते हैं। तभी तो अपने कार्यक्रम की हर कड़ी को हम सजाते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों एवं ज्ञान की ऐसी ज्योत से जिसके लौ तले आप जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत और साहस जुटा पाते हैं। तो श्रमिक बंधु, एक बार फिर हम मिले हैं इस कार्यक्रम में। तो आज भी हम एक ऐसी ही उम्दा जानकारी लेकर आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं जिसकी पोटली हम खोलेंगे बस कुछ ही देर बाद। फिलहाल आपके साथ अपनी इस मुलाकात को खास बनाते हैं चाय की चुस्की के साथ इस मधुर गीत को सुनते हुए। लीजिए आपके FM सेट पर आ रहा है कार्यक्रम की ओर से ये प्यारा सा गीत।

श्रमिक बंधुओं, तपेश भरी इस शाम में जब ऐसे कोई गीत रेडियो पर सुनने को मिलता है तो सचमुच दिल सुकून से खुशी से भर उठता है और दिल करता है कुछ और बातें सुनने की, एक दूसरे से जानने समझने की। तो चलिए इस गीत की मिठास को लिए हम आपको लिए चलते हैं श्रमिक बंधुओं उस दिशा में, उस जगह में जहाँ कुछ बातें हैं सोचने की, समझने की और अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए। श्रमिक बंधुओं, जीवन के कई पड़ाव हैं और हमारा ये जीवन जो है उम्र के कई पड़ाव से होकर गुजरता हुआ बस अपने मंजिल तक पहुंचता है। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। जीवन का हर अवस्था वैसे तो अपने साथ कुछ विशेषताएं लेकर आता है, लेकिन जब तमाम जिम्मेवारियों को पूरा करता हुआ जीवन वृद्धावस्था में आता है तो हमारी शरीर जो है थक सी जाती है और हम दूसरे पर निर्भर करने लगते हैं। ऐसे में अगर हमारे बच्चे सही हैं तब तो सही तरीके से जीवन की ये अवस्था भी निकल जाती है, लेकिन अगर बच्चे सही नहीं निकले और हम ऐसे में अपने शरीर से निशक्त हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमारी पूंजी, हमारे पैसे ही हमारी शक्ति होती है, हमारी ताकत होती है। इसलिए श्रमिक बंधु, हमारे बड़े बुजुर्ग खासकर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिक भाई बंधुओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के जिन मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष तक हो उन्हें 3,000 मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। अब इस योजना में और कौन कौन सी खास बातें हैं, कौन इनका लाभ उठा सकते हैं, किस तरह से इस योजना का लाभ उठाने के लिए हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और किस तरह से कितने महीने में क्या फायदे मिलते हैं, चलिए इन सभी पर थोड़ा थोड़ा कर हम आपको जानकारी देते चलते हैं। तो ध्यान से सुनिए और अपने रेडियो सेट की थोड़ा और करीब आ जाइए। तो ये जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसकी शुरुआत कर हमारी सरकार ने 18 से 40 वर्ष के बीच के श्रमिक को इसके लिए योग्य माना है, इस पेंशन के लिए योग्यताधारी मानते हैं। तो 18 से 40 वर्ष के अगर आप हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं और अगर उनकी मासिक आय 15,000 से अधिक नहीं है तभी इसका लाभ उठा सकते हैं। श्रमिक बंधुओं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन का लाभ उठाने के लिए आप इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं, इन बातों का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इसके लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तो इस योजना का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं श्रमिक बंधुओं, तो सर्वप्रथम पंजीकरण के लिए आपको आपके आधार कार्ड, बचत बैंक खाता या जनधन खाता की जो पासबुक होती है उसकी जरूरत होती है। साथ ही आपके पास एक स्थायी मोबाइल नंबर भी होना चाहिए ताकि आपको तरह तरह की सूचनाएं मिल सके। अब आप जानना चाहेंगे कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो चलिए इस पर भी आपको एक छोटी सी जो ये है सुझाव वो दे सकते हैं। आप इस योजना के लिए दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं श्रमिक बंधु। एक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पंजीकरण आप कर सकते हैं, दूसरा कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM पोर्टल पर जाकर क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पर आपको पहले क्लिक करना होगा। फिर से

0: सुन लीजिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पोर्टल पर आपको जाना होगा। यहाँ क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। आप अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की मदद से भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है रजिस्ट्रेशन का। एक और आपको हमने माध्यम बताया रजिस्ट्रेशन की, पंजीकरण की, वो है कॉमन सर्विस सेंटर। CSC में आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं, वहां का ऑपरेटर आपके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के माध्यम से और दस्तावेजों के माध्यम से आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कर देगा रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से CSC के द्वारा भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकते हैं, अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अब इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी मासिक अंशदान भी करनी पड़ेगी। तो ये किस तरह से करना होगा ये भी चलिए हम आपको बताते हैं। श्रमिक बंधु, इसमें आपको 60 वर्ष की आयु तक हर महीने एक निश्चित प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। इतनी ही राशि भारत सरकार द्वारा भी आपके पेंशन खाते में डाल दी जाती है और ऐड कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। अगर आप 18 वर्ष की आयु के हैं तो आपको ₹55 प्रति माह जमा करना होगा और इतनी ही रुपये सरकार आपके खाते में जमा करते जाएगी। अगर आप 30 वर्ष की आयु के हो गए हैं तो ₹105 प्रति माह आपको जमा करना होगा और इतनी ही राशि सरकार आपके खाते में प्रति माह जमा करते रहेगी। 40 वर्ष की आयु के अगर आप हैं तो ₹200 प्रति माह प्रीमियम आपको डालना पड़ेगा और इतनी ही राशि सरकार आपके खाते में डालेगी, ऐड करेगी। तो इस तरह से आप जब 60 वर्ष के होंगे तो एक अच्छी पेंशन राशि आपके लिए जमा हो जाएगी, जो आपको पेंशन के रूप में मासिक रूप में मिलता रहेगा। प्रीमियम भरने का तरीका भी क्या है चलिए हम आपको बता दें। आप ये मासिक रूप से भर सकते हैं, त्रैमासिक रूप से भर सकते हैं, 3 महीने में या अर्धवार्षिक 6 महीने के आधार पर अपने बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। तो श्रमिक बंधुओं, आज हमने आपको बताया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस तरह से असंगठित क्षेत्र के कामगार जो हैं, हमारे श्रमिक बंधु हैं, उनको पेंशन योजना का लाभ दे रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको लाभ पहुंचाएगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाते हैं तो कल से ही इस पे जुट जाए और आने वाले समय में आपका जो वृद्धावस्था है वो काफी सशक्त होगा। आप आत्मनिर्भर होंगे, किसी पर आश्रित नहीं होंगे, तो सुखमय तरीके से आपकी वृद्धावस्था भी गुजर पाएगी। तो श्रमिक बंधु, आज की इतनी जानकारी काफी है आपके लिए, क्योंकि हमारे अगले मेहमान भी आपके लिए कुछ जानकारी लेकर हाजिर हैं। चलिए उनसे आपको मिलवाते हैं, लेकिन सुनते चलते हैं पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: श्रमिक बंधुओं, हम देखते हैं कि आजकल हमारी जिंदगी इलेक्ट्रिसिटी पर, बिजली पर निर्भर करती है। जीवन के हर आराम, शौक, ऐश हमारे बिजली पर भी निर्भर करती है। बिजली अगर 2 मिनट के लिए भी चली जाए तो ऐसा लगता है गर्मी के दिनों जैसे जान चली जाएगी, क्योंकि फैन, कूलर, AC सब इसी के द्वारा चलते हैं। और अगर TV हो तो ऐसे में TV भी बिना बिजली की नहीं चलती, फ्रिज भी बिना बिजली की नहीं चलती, तो वॉशिंग मशीन भी है बिजली के बिना नहीं चलती। तो बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, इसने हमारी जिंदगी को बहुत ही सुखमय बना दिया है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर बिजली थोड़ी देर के लिए चली जाती है तो हमें कितनी परेशानी होती है ना। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक से जुड़ा कोई कार्य सीख लिया जाए तो ये रोजगार का एक बढ़िया जरिया बन सकता है। और ऐसा ही क्या है मोहम्मद खालिद, हमारे आज के विशेषज्ञ ने, हमारे अतिथि ने, जिन्होंने इलेक्ट्रिक वायरिंग के क्षेत्र में कार्य को सीख कर इसे रोजगार का रूप दिया है और इसके जरिए अच्छी कमाई कर रहे हैं और लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो आइए श्रमिक बंधु, हम अपने कार्यक्रम मेहनत कश में मिलते हैं मोहम्मद खालिद जी से, जो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है उसके क्षेत्र में भी रोजगार के बढ़िया अवसर है। आप इससे भी लाभ उठाकर खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

0: में कितना लोगों ने तय किया है उसके हिसाब से। जैसे आप तो फिर रूम आपने लिया है तो कितने दिनों में आपको समय लगता है उसको कंप्लीट करके वायरिंग दे देने में, किस तरह से आप उसको पूरा करते हैं?
1: जैसे मकान मालिक रूम हमको मांग रहा है कि हम 10 दिन में तैयार चाहिए, तो उसको हम 9 ही दिन में दे देंगे।
0: अच्छा, उसके लिए मतलब क्या
1: उसके
0: मेहनत दिन
1: लिए,
0: रात काम
1: उसके
0: करना होगा?
1: लिए है कि मेहनत लगता है थोड़ा, तो मेहनत के बाद फिर हो ही जाता है।
0: आप अकेले काम कर रहे हैं, आपके साथ कुछ हेल्पर भी हैं?
1: नहीं, हम अकेले करते हैं।
0: तो अकेले करने में जैसे दीवार वगैरह कटिंग करना होता है या फिर तार का भी आपका कटिंग वगैरह करना होता है, कहाँ से कैसे, ये कैसे संभव हो पाता है अकेले?
1: हो जाता है, ज्यादा लड़का लोग को रखने से परेशानी है। एक तो काम ढंग से होगा नहीं, चार अगर दो से चार लड़का रखे हैं तो उधर गप मारे हुए उधर मारे हुए, इसलिए अकेले काम करने का मजा ही कुछ और है।
0: तो खुद जिम्मेदारी के साथ एक आदमी अगर काम कर रहा होता है तो पूरा उसको ध्यान भी रहता है कि हमको कहाँ कैसा है क्या करना है, और काम सक्सेसफुली वो सही साफ सुथरा उतरता है। तो खाली जी, हम ये जानें जैसे 2 रूम है या 4 रूम का है, तो उसमें आपने खैर बता दिया कि 10 दिन का हमने टाइम लिया है तो हमको 9 ही दिन में दे देते हैं, है ना? अच्छा, इसमें कुछ औजार की भी जरूरत पड़ती है ना, किस तरह
1: जी,
0: की औजार?
1: जैसे दीवार के अंडरग्राउंड वायरिंग होता है तो कटर मशीन चाहिए, छेनी हथौड़ी,
0: अच्छा,
1: यही सबसे कटता है दीवार।
0: जैसे दीवार काटते हैं, और कुछ औजार की जरूरत होती है?
1: नहीं, और कुछ नहीं।
0: ना, तो अगर कोई नए लड़के अगर हैं इस लाइन में अगर आना चाहेंगे, जानकारी अगर तो इलेक्ट्रिशियन का वायरिंग का काम अगर करना चाहेंगे, तो उसको किस तरह से आना पड़ेगा, इसमें आ सकते हैं?
1: इसमें पहले तो उसको कुछ दिन, एक आध महीना साथ में उसको रहना पड़ेगा।
0: किसी अच्छे कारीगर के साथ उसको रहना
1: हाँ,
0: पड़ता है।
1: और देखना पड़ेगा कि कौन चीज वो कहाँ कर रहे हैं, वो चीज कैसे हो रहा है, उस पर उसको ध्यान देना पड़ेगा।
0: ये इसको उसमें मेहनत करना है और उसको ध्यान देना है। तो अगर जो लड़के हैं नए इस लाइन में कराना चाहेंगे तो क्या उसके लिए भविष्य इसमें कैसा है, दिखता है?
1: इसमें भविष्य भविष्य बहुत सुंदर है, अगर वो चाहे आना तो एकदम शौक से आइए।
0: है ना, तो उसमें अच्छा आमदनी है, अच्छा मतलब रोजगार का ये जरिया है, बन सकता है।
1: रोजगार बहुत बढ़िया रोजगार है।
0: तो खाली जी, आपने इलेक्ट्रिक वायरिंग के संबंध जो बातें हमको बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रमिक बंधु, अभी आपने भेंट किया मोहम्मद खालिद भाई से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक वायरिंग के क्षेत्र में भी इन दिनों युवा अगर चाहें तो रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं, तलाश सकते हैं, खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, क्योंकि इनकी काफी मांग है आज हमारे समाज में। इनसे बातचीत कर रहे थे मोहम्मद अली शब्बीर अंसारी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस भेंट वार्ता से लाभान्वित होंगे, और आप देखते ही देखते वक्त हो रहा है श्रमिक बंधुओं की हम आपको अलविदा कह दें, लेकिन श्रमिक बंधु आज है विश्व तंबाकू दिवस, और ऐसे में हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आपके साथ मिलकर संकल्प लेना चाहेंगे, लेकिन ये बातें होंगी थोड़ी देर बाद। फिलहाल जाते जाते एक खूबसूरत गीत आपका इंतजार कर रही है आपके रेडियो सेट पर, उससे पहले ये जरूरी संदेश आप तक।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: तो श्रमिक बंधु, आज विश्व तंबाकू दिवस के दिवस पर हम आइए संकल्प लेते हैं कि हम भी छोड़ आएंगे वो गलियां जो हमें नशे की ओर ले जाती है, छोड़ आएंगे वो गलियां जहां वो ऐसे साथी हैं जो शराब और गुटखे की तरफ हमें खींचते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ऐसी गलियां जरूर छोड़ेंगे और निकल आएंगे जीवन के उस प्रकाशित राह पर जहाँ नया जीवन आपका स्वागत कर रहा है। इसी संदेश के साथ डीजे का एक मेहनत कर से वंदना श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।
1: सुना है उस चौखट पे

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेहनत काश। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले तमाम श्रोताओं को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज फिल्म संगीत के सफर का आगाज किया है हमने मासूम फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे आवाज दी है आरती मुखर्जी ने।

दोस्तों, ये फिल्म संगीत का सफर है और आप इस सफर के साथ हैं, हमारे साथ वंदना श्रीवास्तव के साथ और FM 102.1 MHz के साथ। लीजिए और भी गीतों का आनंद, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का ये गाना श्रोताओं आपके लिए आपके एफएम स्टेशन पर, लेकिन इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत की ये महफिल यहीं सिमटती है। दीजिए हमें इजाजत।

0: श्रोताओं आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। संध्या के 6:54 और 26 सेकेंड हो चुके हैं। थोड़ी देर में 7 बजे श्रोताओं आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर होगा जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ये देख कैसे।
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
4: दिखा?
6: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
5: हमेशा शॉपिंग।
7: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
9: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
7: आई नो ना।
9: आरबीआई कहता है,
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हमले को बताया गलत। राज्य में दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। महागठबंधन का दावा, दोनों सीटें जीतने के लिए है पर्याप्त संख्या बल। एनडीए ने कहा, पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल करेंगे राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ। झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में शामिल होने का किया अनुरोध। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन वज्रपात और तेज हवाएं चलने की जताई आशंका, येलो अलर्ट जारी। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में अब से कुछ देर में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आम लोग सरकारी दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों को गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांबरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने का सुझाव दिया है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस हमले को गलत बताया है।
2: हमला कहीं भी लोकतंत्र में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मैं मानता हूं कि 15 वर्षों तक वहां की जनता को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी परेशान किया, प्रताड़ित किया। गुस्सा निश्चित रूप से होंगी जनता की, बल्कि राज्य सरकार को देखना चाहिए। कानून को हाथ में जनता को नहीं लेनी चाहिए और सरकार निश्चित रूप से देख रही होगी।
0: राज्य में दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि महागठबंधन के पास राज्यसभा की दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल है।
3: उनके पास कितनी संख्या है? 24 है, तो कैसे 28 देंगे? ये पार्टी के प्रति जो आइडियोलॉजी में जिनको विश्वास है वह पार्टी चुनाव में विधायकों के लिए करती है, तो ये विधायक कोई भी राज्यसभा चुनाव ये सेंटर का है, आलाकमान का है। आलाकमान ये तय करते, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन की जीत होगी।
0: इधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने कहा है कि पार्टी पूरे दमखम के साथ राज्यसभा चुनाव लड़ेगी।
4: आंकड़ा है तो फिर उनको चिंता करने की बात क्या है? अब हमारा संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। हमारी वैचारिक मतभेद है तो हम चुनाव ही ना लड़ेंगे। हम अपने विचारों के साथ, अपने मुद्दों के साथ, अपने लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में रहेंगे। हमारे लिए 81 मतदाता है और उसमें हमको जीत के 28 सीट चाहिए। हम पूरे आश्वस्त हैं कि हमें 28 जीत के आंकड़े मिलेंगे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। इससे पहले श्री चौहान ने झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा और खूंटी के विधायक राम सूर्या मुंडा ने आज मुरहू स्थित एक आवासीय विद्यालय परिसर में 50 शैया वाले छात्रावास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सांसद ने बताया कि कल्याण विभाग की ओर से लगभग 2,25,00,000 रुपए की राशि से इस छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज परीक्षा केंद्र पर आज बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि दस्तावेज जांच में देरी के कारण वे समय पर परीक्षा कक्ष तक नहीं पहुंच सके और उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष देश के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में आज सांसद ने कहा कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है।
5: अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा हुआ उसकी सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 12 साल बिताए हैं और 12 साल में जो रिफॉर्म्स है, 13 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, 54 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 5 करोड़ से ज्यादा घर बन गए हैं और 8 करोड़ से ज्यादा गैस का सिलेंडर मिला है, तो सभी फ्रंट्स पे ये देश प्रगति कर रहा है।
0: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कुमला सदर अस्पताल परिसर में आज जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने तंबाकू नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करने वाले रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पलामू जिले से पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि ये अपराधी एक निजी कंपनी के कैंप पर गोलीबारी करने की योजना बना रहे थे।
6: एसडीपीओ हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा गया, तो उनके पास से एक बैग में 2 9mm की पिस्टल रिकवर हुई थी और इसके अलावा कुछ गोली उनके पास से बरामद हुई। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा राहुल सिंह के गैंग के लिए रंगदारी वसूलने का काम किया जा रहा था, उनके द्वारा यहां पे किसी घटना को अंजाम देने के लिए ये सब लोग मिलकर आए हुए थे। इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
0: बोकारो जिले में 25 वर्षीय एक महिला की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई ने दावा किया है कि महिला 4 महीने की गर्भवती थी और उसकी हत्या की गई है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। वहीं 2, 3 और 4 जून को उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी जिलों को छोड़कर राज्य के शेष भागों में गरज के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। जामताड़ा के गांधी मैदान में चल रहे 20वीं राज्य स्तरीय 3 दिवसीय बालिका खो खो प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आज रांची की टीम ने प्रतियोगिता जीत ली। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 18 टीमों ने भाग लिया था। आईपीएल गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच अब से कुछ देर बाद शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हमले को बताया गलत। राज्य में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। महागठबंधन का दावा, दोनों सीटें जीतने के लिए है पर्याप्त संख्या बल। एनडीए ने कहा पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल करेंगे राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ। झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में शामिल होने का किया अनुरोध। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन वज्रपात और तेज हवाएं चलने की जताई आशंका, येलो अलर्ट जारी। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में अब से कुछ देर में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: तीनों कॉलेज में
8: डोंट वरी,
7: फीस तो देखो।
9: क्या हाल है, क्या हुआ?
8: फीस की टेंशन,
9: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
10: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
8: वो कहाँ है
10: मिठाई?
11: आरबीआई कहता है
12: तरह से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम जिले में आजकल।
2: कुछ है जिले में आजकल, प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आकांक्षी जिला चतरा में केंद्र सरकार के सहयोग से किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि
2: घंटागंज में बाईपास सैंक्शन हो गया, चतरा बाईपास निर्माण हो रहा है, चतरा का रेल लाइन का गजट हो गया, ये भारत सरकार की लाइन है तो क्या है। दूसरी बात, ये बहुत जगह ऐसे प्रखंड थे जहां आपको पोस्ट ऑफिस नहीं था, कुंदा में पोस्ट ऑफिस नहीं था, लावलंग में पोस्ट ऑफिस नहीं था, राजपुर में पोस्ट ऑफिस नहीं था, कि दौर में इन सारे पोस्ट ऑफिस जो सरकार से रजिस्टर्ड था 20-25 वर्षों से थे सारे सैंक्शन हो गए। रेल लाइन कभी हम लोग गया चढ़ने के लिए जाते थे राजधानी, आज लातेहार में हम चढ़ रहे हैं। 32 ट्रेनें राजधानी, केवल चतरा लोकसभा, केवल हंटरगंज या चतरा ही नहीं है, 5 लोकसभा है, सभी लोकसभा के लिए काम हो रहा है। चतरा से डाल्टनगंज की दूरी 60 किलोमीटर घट गया, एक रोड का शिलान्यास होने जा रहा है, प्रशासनिक हो चुका है उसका, यूना टेंडर होने जा रहा है, मैं खुद लगाऊं चंदवा फ्लाई ओवर के लिए।
1: चतरा जिले के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर 851 झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि जिला प्रशासन जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहा है।
3: सबसे पहले तो मैं चतरा जिले के 35वें स्थापना दिवस पर चतरा जिले वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और झारखंड अलग राज्य गठन हेतु किए गए आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे या उनके आश्रित हैं उनको आज प्रमाण पत्र, शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया था। पूरे जिले अंतर्गत जो 122 आंदोलनकारी थे सभी प्रखंडों से हम लोगों ने उनको बुलाया है आज यहाँ पे जिला स्तर पे और 122 आंदोलनकारी को जो है सम्मानित किया गया है जिला स्तर पहले स्तर। इसके साथ ही साथ जो संबंधित प्रखंड है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने संबंधित प्रखंडों में जो प्रखंड के आंदोलनकारी हैं उनको वहीं पर सम्मानित किया जा रहा है। जिले के अंदर जितने भी हमारे 121 आंदोलनकारी चिन्हित किए गए थे उनको आज प्रमाण पत्र मोमेंटो एवं शॉल के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है।
1: भाजपा के 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर चतरा पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्रालय के द्वारा महिलाओं और बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए बताया कि
4: मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जो साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि 6 साल तक के बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट लगभग 85% हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आंगनबाड़ी केंद्र की जो हमारी दीदियां हैं उनको प्रशिक्षित कर उनको पोषण ट्रैकर के माध्यम से छोटे छोटे रील्स बनाकर कि वो गर्भवती माताओं को भी गर्भवती महिलाओं को भी बताएं, धात्री माताओं को भी बताएं और जो बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं उनको पोषण के साथ साथ उन्हें उनका बौद्धिक विकास कैसे हो उस दिशा में भी वो काम करें, तो छोटे वीडियो के माध्यम से उनको समय समय पर प्रशिक्षण देकर कि उनका बेहतर देखरेख कर सके इस दिशा में भारत सरकार कार्य कर रही है।
1: 30 मई को व्यवहार न्यायालय चतरा में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें 238 मामलों का निपटारा किया गया, वहीं 31 लाख से अधिक के सरकारी राजस्व की प्राप्ति भी हुई। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
0: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, लीजिए पेश है फिल्म संगीत का दैनिक कार्यक्रम जानकार।

स्वागत है दोस्तों, आप सभी का झनकार की महफिल में। मैं हूं आपकी दोस्त वंदना श्रीवास्तव। झनकार भरे गीतों के साथ कार्यक्रम का आगाज करें इस गाने के साथ, लिया फिल्म बागबान से।

अरिजीत सिंह और अरमान मलिक के समान गीतों के लिस्ट में ये गीत सबसे हिट। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान के युगल स्वरूपी गीत।

FM 102.1 MHz पर श्रोता आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली पेशकश।

अख्तराज फिल्म का ये गाना श्रोता आपने सुना सुनिधि चौहान और अदनान सामी की आवाजों में। कार्यक्रम में आगे और भी गीत हैं, लीजिए एक और गीत आप लोग के लिए आपके एफएम सेट पर।

0: It's 7:30.
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम झनकार आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्रीय FM 102.1 MHz पर। संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

रूहानियत गीतों का ये सफर है दोस्तों, ऑल टाइम हिट्स का, और मैं आपके साथ हूँ आपके एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वंदना श्रीवास्तव।

210 हर्ट्ज़ गाने ऐसे गाने होते हैं जो हर मौसम में जवां होते हैं और हर मौसम में हर आशिक दिल को छू जाते हैं। ऐसा ही एक गीत है, आइए सुनाते हैं आपको अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

ऐसे गीत दोस्तों जो हमारे दिलों में हलचल पैदा कर दे, ऐसे गीत जो रूहानियत की हवा बहा दे, ऐसे गीतों को कहते हैं हलचल मिर्च। और ऐसा ही गाना है आपके बीच आपके एफएम सेट पर इस पल।

ऑल टाइम हिट्स। दोस्तों इस पल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की हजारीबाग केंद्र से। ऐसे और भी गीत हैं जो इस पल आपके दिलों में हलचल मचा सकते हैं और हर समय आपको शीतल हवाओं सा ठंडक प्रदान करते हैं। लीजिए, आपके आंगन पहुंच रहा है आपके एफएम सेट पर ये गीत।

0: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही
1: आ गले लग जा। श्रोता आपने सुना इस फिल्म का गाना, ऑल टाइम हिट्स की एक और पेशकश। बाकी दोस्तों लीजिए आपके एफएम सेट पर ये गीत आपके दिल के बहुत ही करीब।

आई बहार आई। श्रोताओ, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, और इसी गाने के साथ श्रोताओ ऑल टाइम हिट्स की महफिल यहीं ढलती है। दीजिए हमें इजाजत।

FM 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए, पेश है फिल्म संगीत का ये सुनहरा सफर।

दिलकश गीतों का ये कारवां है दोस्तों, फिल्म संगीत का। सुनने वाले तमाम श्रोताओं को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार। लीजिए सबसे पहले सुनिए अभिजीत और अलका याग्निक का गाया ये बहुत ही प्यारा गीत फिल्म बादशाह से।

बादशाह फिल्म का ये गाना दोस्तों आपने सुना कार्यक्रम की शुरुआत में। लीजिए एक और तड़कता भड़कता सा गाना आपके दिल को छूने आ रहा है आपके एफएम सेट पर।

200 FM ट्वेंटी 1 MHz पर दिलकश गीतों का ये कारवा यूं ही चलता रहेगा। साथ बने रहिए इस पल अपने रेडियो सेट के। लीजिए कार्यक्रम का अगला गाना आ रहा है बिल्कुल आपके करीब।

दोस्तों, आप सवार है फिल्म संगीत के इस सफर पर, ऐसे कारवा में जहां आपकी हम सफर है आपकी दोस्त वंदना श्रीवास्तव, और आप सुन रही है कार्यक्रम एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुनिए दिल की बात और धड़के आपके दिल, ऐसी कोशिश के साथ ये गीत आप तक पहुंच रहा है आपके एफएम सेट पर।

दोस्तों, बातें ढल रही है और ये महफिल भी ढल रही है, लेकिन गीतों का जो रुतबा है, गीतों का जो दिलकसी है, वो ढलने को तैयार नहीं। लीजिए अगला ये बहुत ही खूबसूरत गीत आप तक, अली सचिनाई की आवाज में, करम फिल्म से।

दिल के अरमानों को और भी सुलगने दीजिए और सुनते रहिए अपना FM 102.1 MHz। लीजिए दोस्तों ऐसे गीतों का एक और सिलसिला आप तक।

अभिजीत और अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ श्रोताओं फिल्म संगीत का ये सफर यहीं सिमटता है। दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत, नमस्कार।

FM 102.1 MHz पर श्रोताओं बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। रात्रि के 8:40 और 35 सेकंड हो चुके हैं। थोड़ी देर में श्रोताओं रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक, फिर होगा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे और स्पॉटलाइट रात्रि 9:15 पर, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने

0: तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमा की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट

0: एक भारत श्रेष्ठ भारत इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लाइक द डॉल्फिन एम्बुलेंस एंड द कॉल फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन ऑल कैरी अ कॉमन मैसेज पॉजिटिव चेंज बिगिंस विद इंडिविजुअल एक्शन एंड ग्रोज थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मिस्टर अशोक टंडन थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड शेयरिंग सच वैल्यूएबल इनसाइट्स विद अस
1: थैंक यू
2: You were listening to a discussion on 134th episode of Mann Ki Baat program. The participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sarabjit Kaur, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
3: Spotlight.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है दोस्तों। फिल्में जो भी हों, लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल का

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

0: 1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
1: मैं

राज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

0: चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।
1: देख

राज खोसला ने अपनी शैली से हटकर, टाइल से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म 16 साल।

पृथ्वीराज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

तो यकीनन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा बनाए रखेगा।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

FM 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, तन्हा रात है, तन्हा ये दिल है, ऐसे में आकाश की ओट से झांकता ये चांद उस महबूबा सा लगता है जो दिल के हर कोने में बसा है।

हिमालय की गोद में फिल्म के इस गाने के साथ अब आइए सुनते हैं अगला बहुत ही खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है मैं तुलसी तेरे आंगन की।

किसी घर की दुल्हन बिल्कुल उस पवित्र तुलसी की तरह होती है, जिसके आंगन में खिलने से पूरा आंगन पवित्रता से छलक उठता है। लता मंगेशकर की आवाज में दोस्तों, मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का ये गाना आप सुन रहे हैं।

किसी की एक मीठी नजर दिल को चुरा लेती है और फिर दिल बन जाता है वो मंदिर जिसमें सिर्फ बसती है महबूब की सूरत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में दोस्तों आप सुन रहे थे ये गाना फिल्म बेटी से। सुनिए रजनीगंधा की अगली पेशकश फिल्म 12 ओ क्लॉक से।

दोस्तों, मोहब्बत के डबगर में अगर कोई हमसफर मिल जाता है तो बस जीवन की हर राहें आसान हो जाती है और हर नजारा दिल को भाने लगता है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और गीता दत्त का गाया ये गीत फिल्म 12 ओ क्लॉक से।

जब से मिले हम सफर राहों में सौ दिए जल उठे। 12 o'clock फिल्म का ये गाना आपने सुना सैयद मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। एक और नायाब गीत गीता दत्त की आवाज में हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनवाते चलते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया ये बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म परिवार से।

हमने जो देखे सपने अब अपने लगते हैं, इन्हीं सपनों में अब जिंदगी की हर दीवाने दीदार दिखते नजर आते हैं।

हमने जो देखे सपने हो गए अपने। आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में परिवार फिल्म का ये गाना। श्रोताओं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली पेशकश।

दोस्तों बाखों में सबकी निंदिया रानी अपना डेरा बसाने लगी है। ऐसे में अब रजनीगंधा की महफिल से लेती है आपकी दोस्त वंदना श्रीवास्तव इजाजत। नमस्कार।

एफएम 102.1 बीका हर्ट्स पर हम बोल रहे आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से श्रोताओं लीजिए पेशे गजलों पे आधारित कार्यक्रम शामी गजल।

0: Bunny. He's Bunny.
1: आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। श्रोता आप सुन रहे थे ये गीत गजल फिल्म डैडी से तलत अजीज की आवाज में। लीजिए सुने कार्यक्रम का अगला बेहद ही खूबसूरत गीत गजल आशा भोसले की आवाज में।

शामी गजल अभी आपने सुना आशा भोसले और जगजीत सिंह की गाई ये बहुत ही उम्दा गजल कार्यक्रम में आगे सुनते हैं आइए पंकज उदास की गाई ये बहुत ही खूबसूरत गजल।

जो मेरे खत का जवाब आया। आपने सुना पंकज उदास की गाई ये गजल। शामी गजल की महफिल दोस्तों इस वक्त रोशन हो रही है FM 102.1 MHz पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली पेशकश।

न जी भर के देखा, न कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। बशीर बद्र की लिखी ये पंक्तियां इस वक्त आप सुन रहे हैं शामी गजल की महफिल में।

0: बट
1: दोस्तों, शामी गजल की महफिल में अब एक नया नाज़्म।

गजलों के सरताज गुलाम अली की आवाज में ये गीत गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है

पौंडी की गाइस गजल के बाद लीजिए श्रोताओं शामी गजल की ये महफिल ढल रही है और सुनते चल रही है आपके साथ ये गीत।

शीतम इसी गजल के साथ गजलों की महफिल शामी गजल यहीं ढलती है। दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत, शबा खैर। शामी गजल आप सुन रहे थे आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। श्रोताओ, अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है. तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है. पानी पीते रहिए. धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले. इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं.
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education CBSE has said an expert team of cyber security professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi MVA had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
3: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता इस पल हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 और 16 सेकंड हो चुके हैं। संपन्न होती हमारी आज की ये सभा यहीं पर। बताते चले श्रोताओं कि कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे आपकी सेवा में अपने केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले विविध कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।